सुप्रभात। मीडियम हीट 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस

0: उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

नदियाँ, पर्वत, खेत और वन सब इसकी पहचान है। अनेकता में एकता जिसकी, यही भारत की शान है। आओ मिलकर प्रण ये लें, देश का मान बढ़ाएंगे, मेहनत, ईमान और प्रेम से भारत को आगे ले जाएंगे।

0: भक्ति चमत्कार मांगने का मार्ग नहीं, स्वयं को बदलने का अवसर है। ईश्वर परिस्थितियां हमेशा नहीं बदलते, लेकिन उनका स्मरण करने वाला मनुष्य परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अवश्य पा लेता है।
1: मंगलम भगव

जिस हृदय में क्षमा बसती है, जहाँ दूसरों के लिए शुभकामनाएं रहती हैं और जहाँ सेवा बिना किसी स्वार्थ के होती है, वहाँ भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं अपना स्थान बना लेते हैं।

आज एक क्षण रुककर अपने मन से पूछिए, क्या मैं केवल अपनी इच्छाएं लेकर प्रभु के पास जाता हूं या उनका आभार मानने भी जाता हूं। जिस दिन प्रार्थना में मांग कम और कृतज्ञता अधिक हो जाएगी, उसी दिन जीवन में शांति का नया सूर्योदय होगा।

जीवन में जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तब धन्यवाद कहना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी हृदय से मुझे आप पर भरोसा है प्रभु निकल जाए, यहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन।
1: जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ सा प्रतीत होता है, मन की योजनाएं अधूरी रह जाती है, रिश्तों में दूरियां आ जाती है, वर्षों से संजोए हुए सपने अचानक आंखों के सामने टूट जाते हैं। उस समय लगता है जैसे जीवन ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हम स्वयं से पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो हमें टूटन दिखाई देती है वह ईश्वर की दृष्टि में एक नई शुरुआत होती है। प्रकृति को ध्यान से देखिए, एक बीज जब धरती की गोद में जाता है तो वह पहले टूटता है। लेकिन शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो हमें टूटन दिखाई देती है वह ईश्वर की दृष्टि में एक नई शुरुआत होती है। प्रकृति को ध्यान से देखिए, एक बीज जब धरती की गोद में जाता है तो वह पहले टूटता है, बिखरता है, अपना पुराना स्वरूप खो देता है। यदि वह टूटने से बच जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसकी टूटन ही उसकी यात्रा का अंत नहीं बल्कि आरंभ होती है। हम भी उस बीज की तरह ही हैं। जीवन जब हमें कठिन परिस्थितियों से गुजारता है तो वह हमें समाप्त नहीं कर रहा होता बल्कि हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को जन्म दे रहा होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को खो देते हैं, किसी अवसर से वंचित रह जाते हैं या किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। उस समय आंसू बहाना स्वाभाविक है, दर्द महसूस करना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान पत्थर नहीं होता, उसका हृदय होता है। परंतु हर आंसू केवल दुख की कहानी नहीं कहता, कुछ आंसू हमें भीतर से निर्मल भी बनाते हैं। वे हमारे अहंकार को धो सकते हैं, हमारी शिकायतों को शांत कर देते हैं और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ के निकट ले आते हैं। सोचिए, यदि सोना अग्नि में तपने से इनकार कर दे तो क्या उसकी चमक कभी सामने आ पाएगी? यदि मिट्टी आग की भट्टी में जाने से डर जाए तो क्या वह घड़ा बन सकेगी? यदि बादल टूटकर बरसने से मना कर दे तो क्या धरती पर हरियाली आएगी? प्रकृति का हर तत्व हमें सिखाता है कि विकास का मार्ग अक्सर टूटन है और परिवर्तन से होकर गुजरता है। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में वह चीज भी दूर कर देते हैं जिसे हम अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता समझते हैं। उस समय हम विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर यही अनुभव होता है कि जो छिन गया था वह हमें रोक रहा था और जो मिला वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था।

0: शायद इसी कारण जीवन के कुछ उत्तर तुरंत नहीं मिलते, कुछ उत्तर वर्षों बाद मिलते हैं, और तब समझ में आता है कि उस समय जो टूट रहा था वह वास्तव में हमें बचा रहा था। टूटे हुए लोग अक्सर सबसे संवेदनशील होते हैं, वे दूसरों के दर्द को समझते हैं क्योंकि वे स्वयं दर्द से गुजरे होते हैं। वे दूसरों के आंसू पोंछना जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आंसू अकेले पोंछे होते हैं। उनकी मुस्कान एक गहराई होती है क्योंकि वे जीवन के अंधेरे रास्तों से होकर आए होते हैं। यदि आज आपके जीवन में कुछ बिखरा हुआ है, यदि कोई सपना अधूरा रह गया है, यदि कोई अपना दूर चला गया है, या यदि परिस्थितियां आपके मन के अनुसार नहीं है, तो स्वयं को समाप्त मत मानिए। हो सकता है कि ईश्वर कभी आपके जीवन की कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हों। हो सकता है कि यह अंधेरा किसी नई सुबह की तैयारी हो। हो सकता है कि यह टूटन किसी ऐसे निर्णय की भूमिका हो जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उजली होती है, और जीवन की सबसे सुंदर शुरुआतें अक्सर वही होती है जहां हमें लगता है सब कुछ समाप्त हो गया है। अंत में बस इतना ही, ईश्वर जब कुछ तोड़ते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि वह समाप्त हो जाए, कई बार वह इसलिए तोड़ते हैं ताकि उससे कुछ और अधिक सुंदर जन्म ले सके। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए क्योंकि हर टूटन के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख शालिनी शुक्ला का और वाचक सर मुकाम सिंह चौहान का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती की बातें। विषय है सोयाबीन में कीट नियंत्रण और वाचक स्वर तुलसा दरगैया का।
2: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी, अभी हमारा खेत में सोयाबीन की फसल लगेल छे। सोयाबीन जो कि एक दलहनी न तिलहनी फसल है, न एकामत तेल न प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा रहे। सोयाबीन दलहन वर्ग की फसल होने का कारण एका में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन रहे। एका दाना नमा 38 से 42% प्रोटीन रहे जो कि दूसरी दाल न की अपेक्षा ज्यादा रहे। एक अलावा एका में 19.5% वसा न 20.9% कार्बोहाइड्रेट पाए जाए। हमारा देश में सोयाबीन वर्तमान में एक नकदी फसल का रूप में लोग उगावज। सोयाबीन की बहुत ज्यादा उपयोगिता होने का कारण दिन प्रदिन एकी खेती न एका से बनने वाला उत्पाद बाजार में लोकप्रिय हुई रहा। सोयाबीन से तेल निकालने के बाद ओको बचेल उपचार खली भी जानवर न मुर्गी नकालने उत्तम आहार को काम करज। सोयाबीन से हलवो पूड़ी गुजिया चाट दही बड़ा दाल भुजिया सूप ब्रेड न दूध जैसा भोज्य पदार्थ न वनस्पति तेल घी साबुन ग्लिसरीन ऐसा उत्पाद बनज। एक ही फसल दलहनी होने का कारण जड़ में गांठ का द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन का एकत्रित करी न जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ावज। अब बात करा खाद न उर्वरक की, तो मृदा परीक्षण का आधार पर एकामा खाद देनू चाहिए। दलहनी फसल होने की वजह से नाइट्रोजन एकामा कम जरूरत पड़े न वसी 20 से 30 किलोग्राम नत्रजन न 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस न 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देनू चाहिए। इन उर्वरक न की मात्रा अंतिम जुताई में हल्का पीछे 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर डालनू चाहिए। बोना का 30 से 35 दिन बाद सोयाबीन को एक पौधो उखाड़ी न देखनू चाहिए की जड़ नमक ग्रंथि न पड़ी की नहीं। कदी ग्रंथि न नहीं पड़ी हुए तो 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से फूल आने का समय प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई की बात करा तो एकाम इना मौसम सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, पर कदी बरसात कम हुए तो एक सिंचाई फली भरने की अवस्था में देनी चाहिए। न जल निकास की भी उचित प्रबंधन करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम का लेना दुई निराई गुड़ाई के काम जरूरत पड़े। पहली बुआई का 30 दिन बाद न दूसरी 45 दिन बाद रासायनिक विधि न द्वारा हम एको रोकथाम करी सकान। रसायन बासालीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले मट्टी में हमका मिलाई देनी चाहिए। न बहनों ने सोयाबीन की फसल में कई प्रकार का रोग भी लगन न कीट व्याधि भी लगन। रोग न की बात करा तो पीला मोजेक रोग जो की वायरस के द्वारा फैलन न ये सफेद मक्खी से फैलन। एक ही रोकथाम में रोग की प्रारंभिक एक अवस्था में रोगी पौधा नाख उखाड़ी नष्ट कर देव चाहिए। रोग को फैलाव रोकना का लेण बोना का 30 दिन बाद फास्फोमिडान 100 EC की 230 मिलीलीटर या मेटासिस्टाक्स 25 EC 500 मिलीलीटर दवा को प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। अंकुरण का समय पौधा सड़ने लगी जाए, एक ही रोकथाम का लेण थीरम 4.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की 20 से हमको उपचारित कर बोना चाहिए। एक अलावा पत्ती न धब्बा पड़ी जाए न आखिरी में पत्ती न गिरी भी जाए न एक लेना डाइथेन Z78 2.5 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में घोड़े न छिड़काव करना चाहिए। उस वजह का कीट न को भी प्रकोप देखा है। सोयाबीन में फली छेदक कीट की बात करा तो एक ही सुंडी न पत्ती न का खाई न नुकसान पहुंचावे। एक रोकथाम का लेना कार्बाराइल 50% घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। तना छेदक में तना सूखी जाए न पत्ती न झुकी जाए न एक ही रोकथाम का लेना थीमेट 10% पाउडर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुवाई से पहले खेत में मिलाना चाहिए। सफेद मक्खी न पत्ती को रस चूसी न पीला मोजेक रोग का विषाणु न का फैलाव एक लेना मेटासिस्टाक 1% या मेलाथियन 0.1% 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर में मिलने छिड़काव करा। सोयाबीन मेगट एक ही रोकथाम का लेना क्लोरोडेन 5% की 25 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से बुवाई से पहले खेत में मिले देवा। न चक्रभ्रंग नाम को कीड़ो भी रहे जेकी मादा कोमल तना न पत्ती न का डंठल पर 3 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर चक्र डमाए जेका सी पौधा न की ऊपरी पत्ती न बाद में पूरा पौधा सूखी जाए। एका लेना 0.05% क्विनालफास न 0.07% इंडोसल्फान या 0.03% मिथाइल डेमेटोन को छिड़काव करना चाहिए। पौधा नसी रस चूसने वाला कीट जैसा कि एफिड जेसिड थ्रिप्स को प्रकोप भी सोयाबीन पर हुए जो कि रस चूसी न पौधा न का कमजोर करी दे। एका नियंत्रण का लेना 0.03% मिथाइल डिमोटोन या 0.07% इंडोसल्फान को छिड़काव करना चाहिए। तो भाई नोनी अपनी जो सोयाबीन की फसल की निगरानी करता रहा देखता रहा क्यों काम कोई कीट व्याधि को प्रकोप तो नहीं भी रो न जसो हमको देखा तो उसको तुरंत हमको निदान करा। किसान भाई बहनों ने हमारो आपसे यज कहना था।
1: सोयाबीन में कीट नियंत्रण इस विषय पर आप सुन रहे थे जानकारी वाचक सर तुलसाधर गैया का और प्रोग्राम था खेती की बातें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

अभी आप श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग सुन रहे थे। गायक सर भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का था, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की। सात बजकर 35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे काव्य पाठ कभी होंगे प्रताप राव कदम। 9 होगा लोक संगीत, कलाकार हैं सपना सिसोदिया और साथी। 9:15 पर सुगम संगीत में सुनिए कुंजलता वर्मा को। 9:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए गजानन बारुड़े का गायन, राग है अहिर भैरव, तबला संगत सारंग लासुर करके। 10 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम है। 11 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। इस घंटे की खास खबरें 11:58 पर, 12:58 पर और 2:58 पर। दिन में 12 सुनिए फिल्म संगीत और 12:30 संग्रहालय से प्रोग्राम। 1 होगा महिला कार्यक्रम, आप सुनेंगे प्रतिभा किरण योजना, छात्राओं की उच्च शिक्षा के संबंध में जानकारी। कविता पाठ होगा डॉक्टर बेमी मनोज का। मी टाइम में जानिए क्रोशिए की बुनाई, आर्थिक स्वावलंबन अपनी पहचान।

ये जानना भी जरूरी है। 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का प्रोग्राम। 2 सुनिए फिल्म संगीत। 2:30 पर हम लेकर आएंगे चित्रपट संगीत का प्रोग्राम। शाम 5 युवाणी कार्यक्रम होगा युवा साथियों के लिए। आज का क्रम होगा साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत और 6 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुगम संगीत में 6:30 कलाकार हैं कुंजलता परमा।

0: संध्या 7 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रैली करेंगे। अस्थी में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रैली करेंगे और 8:15 पर सुनिए प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:15 पर सुनिए चित्रगीत और 9:30 पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम होगा मन भावन। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए गजानन बारुड़े का गायन राग है यमन। तबला संगत सारंग लासुरकर की। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। अशीतितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्राय स्वकीयं संदेशं प्रदास्यति। राष्ट्रपतेः एतत् संबोधनं सायं 7 वादने आकाशवाण्याः समग्रे राष्ट्रीय संजाले प्रसारयिष्यते। एतदतिरिच्य दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु प्रथमं हिन्दीभाषायां ततः आंग्लभाषायां च अस्य प्रसारणं भविष्यति। दूरदर्शने हिन्दी आंग्लरूपयोः प्रसारणात् परं अस्य क्षेत्रीय भाषासंस्करणानि दूरदर्शनस्य क्षेत्रीयवाहिनीषु प्रसारयिष्यन्ते। अवधेयमिदं यत् आकाशवाण्या अपि संबोधनस्य क्षेत्रीय भाषा संस्करणानि रात्रौ 9:30 स्वकीयेषु क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रेषु प्रसार्यते। संसदः प्रावृट सत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणं अनिश्चित कालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 दिनांके प्रारब्धं, यस्मिन् 15 दिवसेषु आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य 12 विधेयकानि संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 विधेयकानि पारयित्वा स्वकीयं मूल वैधानिक कर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37:49 होरात्मकमेव प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिज संशोधन विधेयकं 26,2000 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णांगारक खनिमंत्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 57:29 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्यतावत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः वर्तते। देशस्य विभाजन काले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धांजलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्नेहि

0: विभाजन काले घोर यातनाम अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकतां अखण्डतां सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः चतुर्वादनतः एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगम गमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे चतुर्दिनानि यावत् आयोजितायां राष्ट्रमण्डल प्रतिस्पर्धायां अत्युज्ज्वल प्रदर्शनेन सह भारतं 35 पदकानि स्वायत्ती कृतवत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर
3: भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में

0: हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं,
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: और सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
5: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु

0: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा करें। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आज विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस। 1947 के विभाषण में जान गंवाने और पीड़ा झेलने वालों को देश याद कर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में होंगे शामिल। शिकायतों के निराकरण की करेंगे समीक्षा। और भोपाल में आज निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। 32 किलोमीटर के सफर में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस दिन विभाजन की त्रासदी को याद कर प्रभावित परिवारों के संघर्ष और दर्द को स्मरण किया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी।
1: पार्टीशन हॉरर डे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है, ये केवल उन स्मृतियों को कुरेद करके एक बार फिर उन घावों को ताजा करने जितना मात्र सीमित नहीं, अभी तो हम सब लोगों के लिए ये प्रेरणा लेने का दिन है। ऐसी दुरूह परिस्थिति देश में कभी न आए, इसलिए देश को इनको स्मृतियों में को ताजा करने एक बार फिर संकल्प लेने का अवसर के रूप में विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने का क्रम प्रारंभ हुआ है।
0: वहीं दूसरी तरफ भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई है। ये प्रदर्शनी आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

0: आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। वे कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लोगों के शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन के जरिए समस्याओं के समाधान की स्थिति देखी जाएगी। मुख्यमंत्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाय का निरीक्षण कर मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लास का जायजा भी लेंगे। इसके बाद वे प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में दो दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन कार्यक्रम में युवाओं ने संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर बहस भी की। वहीं आज समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए।
1: जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इसी बात को देखता है। वहाँ खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ। वहाँ खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूँ। वहाँ कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं व्यापार वर्ग से आता हूँ। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू होकर संत नगर की भैंसाखेड़ी मंदिर तक जाएगी। करीब 32 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 1,00,000 से ज्यादा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे। चूना भट्टी समेत कई जगह सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहाँ नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश दिए जाएंगे। वहीं कल भोपाल, ओमकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर, बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज्यादा तिरंगा सजी नावों के साथ नौका यात्रा शुरू हुई, जबकि ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई। उज्जैन में अधिकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली। दमोह, मैहर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी तिरंगा यात्राओं के साथ स्कूल कॉलेजों में देशभक्ति कार्यक्रम, तिरंगा रंगोली और चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई, जबकि भोपाल और इंदौर में भी कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। सीहोर में 204 किलो संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त कर उसका नमूना जांच के लिए भेजा गया है। मुरैना में भी 3 डेयरियों से 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने तक जब्त पनीर को एनालॉग पनीर नहीं कहा जा सकता। सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। खंडवा में विभाग के अनुसार पिछले 15 दिनों में पनीर के 7 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के अपर लेक स्थित बोट क्लब पर चल रही तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन ILCA4 बॉयज में वासु चंद्रवंशी और गर्ल्स में माही वर्मा पहले स्थान पर रहीं। आईक्यू फाइल में आर्यन पाटीदार और प्रार्थना भोई ने चारों रेस जीतकर पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मॉनसून का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते आज जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडौरी, मऊकंद, सीधी, सिंगरौली समेत अगले 24 घंटे में 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश यहां हो सकती है। भोपाल समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होने की संभावना है। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अधिकारियों का दल आज खंडवा के पंधाना विकासखंड के ग्राम गांधवा का दौरा करेगा। मंदसौर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने गंभीर कुपोषित और अति कम वजन वाले बच्चों को तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बड़ौ क्षेत्र के गंगापुर क्लस्टर में आयोजित होने वाले जन विश्वास शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का जिला अधिकारी मौके पर समाधान करेंगे। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अशोकनगर जिले की जनपद पंचायत चंदेरी में और विधानसभा क्षेत्र इंदौर 4 की उषा राजे परिसर में आज विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल तिरंगा महारैली निकाली गई। डीआरपी लाइन से शुरू हुई रैली का शुभारंभ मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। गुना में बीबीजी रामजी योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम सिंह चौहान की।
1: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। आप सभी को स्वाधीनता पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, कल यानी 15 अगस्त 2026 को हमारा देश 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर इंदौर सहित विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता दिवस का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इंदौर में मुख्य राजकीय समारोह RAPTC ग्राउंड में होगा। इसके अलावा शहर में कई स्थानों पर सांस्कृतिक, नागरिक, सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य समारोह स्थानीय RAPTC ग्राउंड महेश गार्ड लाइन में 15 अगस्त को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट उपस्थित रहेंगे और प्रातः 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राज्य के नाम संदेश का वाचन किया जाएगा। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल, विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस, होमगार्ड्स, ट्रैफिक पुलिस और स्काउट गाइड्स सहित विभिन्न प्लाटून परेड एवं सलामी देंगे। इंदौर के प्रमुख विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति और लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस समारोह में वर्ष भर उत्कृष्ट सेवा देने वाले शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वतंत्रता संग्राम व लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रातः 8 बजे इंदौर कलेक्टर द्वारा कलेक्टोरेट में ध्वजारोहण किया जाएगा। संभाग आयुक्त कार्यालय में संभाग आयुक्त द्वारा कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर पीठ में प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा हाईकोर्ट परिसर में तिरंगा फहराया जाएगा। इस अवसर पर इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पर सुबह तिरंगा फहराया जाएगा, जहां हजारों स्थानीय नागरिक राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों के साथ एकत्रित होंगे। ब्रिटिश कालीन गांधी हॉल परिसर में सार्वजनिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बैंड द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विजयनगर चौराहा, पलासिया और रीगल चौराहा से शहर के प्रमुख युवाओं द्वारा और इसके साथ ही खेल प्रेमियों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा तिरंगा साइकिल यात्रा और बाइक रैलियां भी निकाली जाएगी, जो राजवाड़ा पर समाप्त होगी। शहर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर नाटक, देशभक्ति गीत और लोक नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आज से ही इंदौर विद्युत सज्जा से रंगारंग हो उठा है। राजवाड़ा, हाईकोर्ट, इंदौर रेलवे स्टेशन और गांधी हॉल सहित विभिन्न स्थानों पर रंग बिरंगी लाइटों से ये भवन जगमगा उठे हैं। इंदौर के प्रसिद्ध फूड हब 56 दुकान पर व्यापारी विशेष तिरंगा थीम व्यंजन तैयार कर रहे हैं। वहीं इंदौर शहर के प्रमुख मॉल्स में पेट्रियोटिक म्यूजिकल बैंड्स, बच्चों के लिए आर्ट कंपटीशन और स्वतंत्रता दिवस विशेष शॉपिंग ऑफर्स व डिस्काउंट दिए जा रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान 2026 धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह राष्ट्रव्यापी अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक चल रहा है। इंदौर में राजवाड़ा, बड़ा गणपति, रीगल चौराहा और गांधी हॉल जैसे प्रमुख मार्गों पर विशाल तिरंगा यात्राएं और रैलियां आयोजित की जा रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के नालंदा परिसर से रीगल चौराहे और मधुमिलन चौराहे होते हुए भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली जा रही है। शहर के सभी स्कूलों, कॉलेजों और नगर निगम के विभिन्न वार्डों में प्रभात फेरी और बाइक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि सदा ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड का पालन करें। ध्यान रखें कि तिरंगा कहीं से कटा फटा या झुका हुआ ना हो और उसे पूरे सम्मान के साथ फहराया जाए। आप भी डिजिटल सहभागिता कर सकते हैं और तिरंगे के साथ अपनी फोटो खींचकर आधिकारिक hargharTiranga.com पोर्टल पर अपलोड कर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

0: श्रोताओं, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 8 और 9 अगस्त को दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में न्याय व्यवस्था को सुलभ बनाने और पीड़ित के साथ सही संवाद स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया। वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस विषय पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक जस्टिस सूर्यकांत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, भारत एक विविधता वाला देश है। हर क्षेत्र और स्थान के अनुसार परेशानियों का प्रकार भी बदलता रहता है। जिस क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, हमें उसी क्षेत्र की भाषा, व्यवहार और प्रकृति के अनुसार संवाद करना चाहिए। जो न्याय की आस में आपके पास आया है, उसकी आधी परेशानी सिर्फ आपके व्यवहार से ही दूर हो जाती है। यदि आप उससे उसी की भाषा में सही तरह से संवाद करेंगे तो वह सहज होने लगेगा और आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ता जाएगा।
1: कि सिर्फ मिनिस्ट्री से या जुडिशरी से या किसी एक संस्था विशेष से न्याय का जो सपना है पूरा नहीं होता। ये सबको मिलजुल करके इस संघर्ष में, इस यज्ञ में शामिल होकर के आहुति देनी होती है। ए माइग्रेंट वर्कर इन गुजरात, गोवा के लोगों की जो फिशरमैन है उसकी अलग समस्या है, मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटी की अलग होगी, तो गुजरात में अगर महिलाओं के जो जहां पर जैसा प्रदेश जहां पर उनको काफी अधिकार और सम्मान और मान सम्मान मिलता है, अगर वहां पर कोई समस्या होती है तो उसका इन सब का अगर आप देखेंगे तो समस्या का एक जैसी समस्या नहीं हो सकती। अब जब समस्याएं अलग हैं तो उनका समाधान एक नहीं हो सकता, हर समस्या का समाधान भी अलग होगा। तो लोकल समस्या को लोकल निदान से ही आपको ठीक करना होगा। लोगों से हमें सीखना है उनको समस्याओं का निदान करने के लिए। जब तक मरीज की समस्या को डॉक्टर नहीं समझ लेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरा उसका अच्छा इलाज कर पाएगा। इसलिए कम्युनिटीज में समस्याएं क्या हैं, उनकी दुख दर्द क्या है, उनको समझना सबसे पहले आवश्यक है।
0: इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित किया।
2: न्याय करने में पुत्र और प्रजा में कोई अंतर न करे, ये उदाहरण भी यही होलकर महारानी अहिल्याबाई के माध्यम से मिला है। गलती गलती होती है, न्याय न्याय होता है। महारानी अहिल्याबाई ने अपने एकमात्र पुत्र को गलती होने पर उसी समान दंडित किया जैसे वो सामान्य रूप से न्याय सिंहासन पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश करता। डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं, वो इसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर कानूनों को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते से हम भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए और जैसा कि अभी वर्तमान के माहौल में हमने सबने देखा है, अभी से थोड़े दिन पहले ही।
0: इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुँच हो, यह हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया में भारत की पहचान लोकतंत्र की जननी के तौर पर है।
3: कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने वाली संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। कि प्रत्येक नागरिक को इक्वल जस्टिस एवं फ्री लीगल एड उपलब्ध कराई जाए, ताकि आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित न कर सके।
0: इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय विश्नोई, न्यायमूर्ति आलोक अराधे, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशगण, विधिक सेवा प्राधिकरणों के वरिष्ठ पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अनेक प्रतिष्ठित नागरिक और बड़ी संख्या में पैरा लीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित थे। श्रोताओं, सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान ओमकारेश्वर पालकी में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने नगर में निकलते हैं, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु पवित्र नर्मदा स्नान के बाद सवारी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार यानी 10 अगस्त 2026 को भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की द्वितीय पारंपरिक सवारी यात्रा अपार उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई। दो अलग अलग सवारियों में भगवान पालकी में विराजमान होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी के दौरान भगवान को नौका विहार कराया गया, जहां तटों पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और जय ओंकार के जय घोष किए। इस विषय में और अधिक जानकारी के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ रहे हैं, तो आइए चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य पुजारी पंडित डंकेश्वर दीक्षित।
4: ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव, ओंकाराय नमो नमः। भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर चतुर ज्योतिर्लिंग है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा की तपस्या से प्रकट हुए है, जो कि शिवपुराण में उल्लेख है। मानधाता राजा का, जिन्होंने माँ से ने पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से स्वयंभू निराकार प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार हम आरती करते हैं, प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक ही शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए अखंड दीप जल रहा प्राचीन समय से। एक ही दीपक में तीन बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे भगवान ओंकार विराजमान है, वो पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। इसके चारों तरफ नर्मदा जल जलहरी बनकर बह रही है। सावन मास का तीसरा सोमवार है, जहाँ पर भगवान ओंकारेश्वर आशुतोष श्रावण मास में भक्तों को दर्शन देने के लिए, आशुतोष आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। आज श्रावण मास तीसरा सोमवार होने से जो हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो नर्मदा स्नान कर रहे हैं, नर्मदा जल भर करके भगवान ओंकारेश्वर का जल अभिषेक कर रहे हैं। जिस प्रकार हम संकल्प करते हैं, कामदम मोक्षदम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के तापों से हम ग्रसित हैं। जो जनता भगवान ओंकार का दर्शन करके इन तापों से मुक्त करने के लिए तत्पर श्रावण मास के सोमवार को विराजमान है। श्रावण मास का सोमवार होने से हजारों की भक्त संख्या आकर के इस पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, ओमकार की परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा स्नान कर रहे हैं और भगवान आशुतोष ओंकारेश्वर को नर्मदा का जल चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और अपना भगवान ओंकारेश्वर की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ओंकारेश्वर को आशुतोष आशीर्वाद देने को तत्पर है। मंदिर प्रशासन और शासन द्वारा यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है, यहाँ पार्किंग व्यवस्था है, VIP दर्शन है, जनरल दर्शन है। प्रशासन ने और मंदिर प्रशासन ने इनके लिए अच्छी सुविधा करी, जो कम समय में अच्छे दर्शन करके संतुष्ट प्रसन्न होके जा रहे हैं। सावन सोमवार होने से यहाँ पर भगवान का सभा मंडप भी फूलों से सजाया गया है, गर्भगृह भी सजाया गया है, ताकि दर्शनार्थी आके दर्शन का आनंद लें और प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य को वापस पहुंचे। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय।
5: आज के इस कार्यक्रम के तमाम श्रोता साथियों को नमस्कार। शिव कोटी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन की ओर से साथियों बताना चाहेंगे, अभी पवित्र सावन माह चल रहा है और सावन माह में बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की बड़ी कुशलता से उपासना की जाती है। इसी क्रम में हमारे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, जो कि माँ नर्मदा के तट पर बसा हुआ है, स्वयं शंभू के नाम से प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ की सावन माह में बड़े ही उपासना की जाती है। हमारे ओंकारेश्वर में अभी दूसरा सावन सोमवार गया है, प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सावन माह के में 4 सोमवार होंगे, जो दो सोमवार बीत चुके हैं, गए सोमवार में हमारे ओंकारेश्वर से बाबा भोलेनाथ मंदिर से बाबा की सवारी शाम 4 बजे नर्मदा तट पर लाई गई, जिसमें आकर्षण का केंद्र रहा भांग और सूखे मेवों से बाबा ओंकारेश्वर का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार में 5 क्विंटल मिठाई का भोग लगाया गया, जो कि आशीर्वाद स्वरूप भगवान के सभी भक्तों में बांटा गया। साथियों बताना चाहेंगे, अभी सावन माह चल रहा है और हमारे ओंकारेश्वर में लाखों की तादाद

अपने भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, जो कि माँ नर्मदा में स्नान कर यहाँ से जल भरकर कांवड़िए लाखों की तादाद में उज्जैन के लिए प्रस्थान करते हैं। लाखों की तादाद में कांवड़िए उज्जैन से हमारे ओंकारेश्वर में बाबा भोलेनाथ ओंकारेश्वर जी को जल चढ़ाकर अपने जीवन को यथार्थ कृतार्थ कर रहे हैं। हम आप सभी मित्रों से यही कहना चाहेंगे कि आप भी इस प्राकृतिक और पुण्य सावन माह का हिस्सा बने, ओंकारेश्वर आए और बाबा भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पे माँ नर्मदा में स्नान कर जल चढ़ाएं। ये पवित्र महा भगवान की आराधना का होता है और माँ नर्मदा में स्नान कर आप भी इस पवित्र सावन माह का हिस्सा बन सकते हैं।

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति मुकाम से चौहान की थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए आप सुनते हैं सुनहरे पल कार्यक्रम।

सुनहरी पल के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। श्रोताओं, आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इस अवसर पर हम उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1947 के भारत विभाजन के दौरान अपार पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष का सामना किया। ये दिन हमें इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय की याद दिलाता है, साथ ही एकता, भाईचारे और मानवता के संदेश को भी मजबूत करता है। 14 अगस्त भारतीय इतिहास का वो दिन जो हमें स्वतंत्रता से ठीक पहले घटित उस हृदय विदारक घटना की याद दिलाता है जब देश के विभाजन ने लाखों लोगों को अपने घर बार, रिश्तों और सपनों से अलग कर दिया। बिछड़ गए थे घर आंगन, छूट गए थे गांव, विभाजन के उस दर्द ने दिए थे गहरे घाव। मगर न टूटी उम्मीदें न मिटा विश्वास, भारत की माटी ने फिर रचा विकास का इतिहास।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल 1947, देश आजादी की दहलीज पर था। एक तरफ स्वतंत्रता की खुशी थी और दूसरी तरफ विभाजन का गहरा दर्द। लाखों परिवारों को अपना घर छोड़कर अनजान जगहों की ओर जाना पड़ा। अनेक परिवार बिछड़ गए और असंख्य लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसी ऐतिहासिक पीड़ा और विस्थापन की स्मृति को हम याद कर रहे हैं आज। कुछ घर थे जो कल तक आबाद हुआ करते थे, कुछ रास्ते थे जो अपनों के साथ हुआ करते थे। वक्त ने सरहदें खींच दी नक्शे पर, मगर दिलों में बसे रिश्ते कहाँ बट पाया करते हैं।

आज़ादी की खुशी और विभाजन का दर्द दोनों एक ही समय के इतिहास का हिस्सा हैं। उस समय लोगों ने सिर्फ सीमाएं पार नहीं की, उन्होंने अपनी यादों से भरे घर पीछे छोड़े। किसी ने अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़ी, किसी ने खेत, किसी ने दुकान और किसी ने अपना पूरा बचपन। सामान कम था, यादों का बोझ बहुत था। एक हाथ में गठरी, दूसरे में अपने हाथों का हाथ था। पीछे छूट गया था अपना शहर, मगर आंखों में अब भी उसी घर का साथ था। दर्द की वो दास्तां आज भी रुलाती है, वक्त की हर सिरहन याद दिलाती है, जो खो गई राहों में उन्हें नमन बार बार, उनकी कुर्बानी से रोशन है ये हमारा हिंदुस्तान।

सरहदें नक्शों पर खिंची थी, रिश्तों पर नहीं। दर्द सबका था, किसी एक का नहीं। इंसानियत जहाँ बची वहीं उम्मीद बची, वरना अंधेरा इतना था कि कोई रोशनी नहीं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है एक दर्द भरी कहानी, आंसू, संघर्ष और बलिदान की अमर हुई निशानी। लेकिन उन गांवों से आगे बढ़कर भारत ने राह बनाई, एकता, प्रगति और विश्वास की नई ज्योति जगाई। आज इतने वर्षों बाद श्रोताओं, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उस समय किसने क्या खोया था, सवाल ये होना चाहिए कि हमने उस इतिहास से क्या सीखा।

अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पल प्रोग्राम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा

0: का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित डीबीटी को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
4: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव। 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
7: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August every year as the day to commemorate their sacrifice. It also ensures that future generations remember the pain and suffering endured by the people as the birth of independent India was marked by the violent partition which left lasting scars on millions. The Partition Horrors Remembrance Day keep reminding people of the need to remove the poison of social divisions, disharmony and further strengthen the spirit of oneness, social harmony and human empowerment. The partition caused among the largest migrations in human history, affecting about 20 million people. While celebrating the independence, a grateful nation also salutes those people who had to sacrifice their lives in the frenzy of violence. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
6: On Partition Horrors Remembrance Day, Prime Minister Narendra Modi has remembered the courage of all those who were impacted by partition. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. Mr. Modi added that at the same time, people overcame this and rebuilt their lives from nothing, turned adversity into achievement, and contributed immensely to the nation's progress. Union Home Minister Amit Shah has paid homage to all those who lost their lives in the partition and to those who struggle against the atrocities on Partition Horrors Remembrance Day. In a social media post, Mr. Shah said that the day of 14th August 1947 stands witness to one of the most brutal chapters in history in which millions of people had to lose their lives and endure inhuman sufferings. A grand tricolor rally will be held in Bhopal today under Prime Minister Narendra Modi's Har Ghar Tiranga campaign. The rally will start at 10 a.m. from near Mother Teresa School on Kolar 6-lane road. It will cover around 32 kilometers and end at Bhaisa Khedi Mandi in Santanagar. Organizers expect more than 1 lakh people to take part in the rally. Chief Minister Dr. Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal will join the rally. Special arrangements have been made for traffic, parking, security and crowd management. Arrangements have also been made keeping the possibility of rain in mind. Selfie points have been set up at several places including Chuna Bhatti. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said that the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebrations. The DMRC said that the metro services will operate at a 30-minute frequencies on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. The Lal Killa, Jama Masjid and Delhi Gate metro stations are the nearest stations to the Independence Day celebrations venue. Delhi government has approved 20% horizontal reservation for ex-Agniveers in direct recruitment to fire operator posts in Delhi Fire Services and warden and matron posts in prison department. The Home Department order also provides age relaxation for eligible candidates. It fits in with the policy of Government of India for rehabilitation of ex-Agniveers. Union Home Ministry has already reserved 50% of the posts at the Constable General Duty and Rifleman level in all the Central Armed Police Forces CAPFs and Assam Rifles for ex-Agniveers. Squadron leader Bhavana Kant has scripted history by becoming the first woman officer of the Indian Air Force to qualify as a fighter combat leader at the Tactics and Air Combat Development Establishment, Gwalior. In a social media post, the Indian Air Force said it is a landmark achievement reflecting professional excellence, combat acumen and the IAF's commitment to nurturing leaders in the air. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the morning news. In Uttarakhand, 7 people died and 14 sustained injuries following landslide and water seepage in an under-construction tunnel at a hydroelectric project site in Chamoli district yesterday evening. 21 people have been brought out of the tunnel. Of them, 7 were declared dead, while 14 others have sustained injuries and are undergoing treatment at a nearby hospital. We spoke to Vinod Kumar Suman, Secretary of the Disaster Management and Rehabilitation Department, about the latest update on the incident.
2: In Chamoli district, some portion of a tunnel was collapsed. There were around 21 persons in tunnel. All are rescued. 14 are alive and 7 are dead. District head collector, SP Chamoli, senior officers of district administration, senior officers of THDC and SCC, NDRF, SDRF, DDRF, CISF, persons are rescue, continued work of rescue. Rescue work is going on. Situation is normal in the tunnel.
6: Our correspondent reports that the incident occurred at the Tehri Hydro Development Corporation's project site in Peepalkoti area.
8: Soon after the accident was reported, teams from the district administration, police, SDRF, NDRF, fire services and medical departments reached the spot. Chamoli district magistrate Gaurav Kumar also reached the site and supervised the rescue operations. The injured workers have been admitted to the district hospital in Gopeshwar. In view of their condition, base hospitals Srinagar and AIIMS Rishikesh have also been kept on alert. Meanwhile, Chief Minister Pushkar Singh Dhami reached the State Emergency Operations Center in Dehradun late night and reviewed the relief and rescue operations. He directed officials to continue the rescue mission on a war footing with the safe evacuation of every trapped worker as top priority. The Chief Minister said that the state government stands firmly with the affected workers and their families and will provide all possible support. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
6: The Central Bank Digital Currency, CBDC, Digital Rupee for the Direct Benefit Transfer, DBT, under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana will be launched in the Union Territory of Chandigarh today. We have more from our correspondent.
3: The initiative marks the next evolution by the Government of India in welfare delivery from physical distribution of subsidized food grains to direct benefit transfer, DBT, and now to purpose-bound digital delivery through Central Bank Digital Currency, CBDC. According to official sources, Chandigarh will be the first union territory in the country to undertake a full-fledged rollout of CBDC-based DBT for food subsidy under Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan will be the chief guest. Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Prahlad Joshi, will be the special guest. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
6: Odisha remains on high flood alert as incessant rains triggered by low-pressure system continues to swell major rivers, with the Baitarani and Buda Balanga posing a fresh threat in the northern districts. At Akuapada in Bhadrak, the Baitarani has crossed the danger mark, inundating downstream areas and marooning several villages in Bhandari Pokhare. Our correspondent reports that with another low-pressure system likely around the 20th of this month, authorities are bracing for a further deterioration of the flood situation.
9: The flood situation in Odisha has turned critical at several places following incessant rain under the influence of a low-pressure system. The Baitarani is flowing above the danger level at Akuapada in Bhadrak, touching around 19.27 meters against the danger mark of 18.33 meters. Downstream areas, including Bhandari Pokhari, are witnessing fresh flooding, with several areas marooned. The rise of Buda Balanga River is also creating panic among the people living downstream of Mayurbhanj and Baleswar districts. Meanwhile, reports of flood-related diseases are emerging from marooned areas. Another low pressure area is likely over the Bay of Bengal around the 20th of this month, raising concern over a further worsening of the situation. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
6: The deep depression over the West Bengal coast is gradually moving west northwestwards towards Gangetic West Bengal. We have more from our correspondent.
10: The deep depression over the West Bengal coast is gradually moving west-northwestwards towards Gangetic West Bengal. According to the latest reports, the system was located around 60 kilometers west of Kolkata and 50 kilometers east-northeast of Bednipur. The weather system is likely to bring heavy rainfall to several districts today. A yellow warning has been issued for east and west Midnapur, Jhargram, South 24 Parganas, Purulia and Pashchim Bardhaman. Squally winds of 40 to 50 kilometers per hour may occur at isolated places in South 24 Parganas and East Midnapur. Other districts of South Bengal are also likely to receive scattered rainfall. Fishermen have been advised not to venture into the sea until tomorrow. In North Bengal, heavy rainfall is focused in Jalpaiguri and Alipurduar district today. Shundipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
6: The agitation by students and job aspirants in Jharkhand over alleged irregularities in recruitment examinations entered its 21st day today. Protesters have refused to call off the stir and reiterated their demands for a CBI probe and cancellation of the Jharkhand Staff Selection Commission combined graduate level examination. The protesters have also announced a Tiranga Yatra on the 15th of August to strengthen their agitation. In Canadian Open tennis, 7 seed Iga Swiatek of Poland defeated 2nd seed Elena Rybakina in straight sets to claim the women's singles title in Toronto last night. Swiatek captured her first title of the season with a swift 6-2-6-3 win, giving her a confidence boost heading into the US Open. In men's singles, American tennis player Ben Shelton won the title in Montreal by defeating fellow American Brandon Nakashima with a score of 6-3-7-6. With this victory, the 5th-seeded Shelton successfully defended his tournament crown and captured his second career ATP Masters 1000 trophy. This victory marks his 4th tournament win of the 2026 season, following earlier titles in Dallas, Munich and Stuttgart, bringing his total career tour level titles to 7. India emerged as the overall champion of the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
11: Thank you, Nishit. News of monsoon session of parliament ending with record low productivity is carried prominently by all the leading dailies. Parliament clears Mines and Minerals Amendment Bill, restricts states' powers, writes the statesman. Akali Dal leader Sukhbir Badal attacked in Nanded, Maharashtra, sustains hand injury, is the front page story in the Indian Express. All Air India pilots to undergo mandatory dope test, says the Asian Age. Jharkhand cops file FIR over August 10th march of students to the assembly, says a report in Hindustan Times. Delhi Metro to start services at 4 a.m. on Independence Day, says a report in the Tribune. Succession search starts at Tata Sons after Chandrasekhar's exit, headlines Financial Express. And finally, historian Sumit Sarkar passes away, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Nishit.
6: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रताप राव कदम से काव्य पाठ।
1: नमस्कार। श्रावण और हमारे महान देश का स्वतंत्रता दिवस, दोनों का उल्लास मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। देश दरअसल नक्शे में नहीं होता, हमारे भीतर होता है। हम रगों में जैसे हमारे लहू दौड़ता है, वैसे ही देशभक्ति की भावना भी हमारे भीतर अंगड़ाई लेती है। देश नदियों से, तालाब से, जंगल से, पहाड़ से, पर्वत से तो बनता ही है, लेकिन असली आकार ग्रहण करता है उसमें रहने वाले लोगों से। देखिए तो कितना महान और विशाल देश है हमारा। जो बात कश्मीर में अपने ढंग से हम महसूस करते हैं, केरल की रंगत बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश अलग ही ठाट लिए हुए है, तो मध्य प्रदेश जो हृदय से धड़कता रहता है देश के भीतर, उसकी बात अलहदा है। सेवन सिस्टर्स की बात करें तो गर्व से मस्तक ऊपर हो जाता है। इतने विशाल देश को जो बात एक सूत्र में बांधती है, वह बात है हमारी भारतीयता। हम भारत के निवासी जो इस देश को अपने भीतर तक महसूस करते हैं, इस महान देश को अपने भीतर तक महसूस करते हैं, इस देश के किसान, इस देश के जवान, इस देश के युवा, इस देश के विद्यार्थी सब इस देश को बनाने में लगे हैं, हमारा नेतृत्व, तो ये सब मिलकर और हमारा इतिहास भी हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। दरअसल इतिहास क्या होता है? इतिहास वह होता है जो आने वाले समय की इबारत लिखता है। तो ऐसी ही इबारत किसान भी लिखते हैं। देशभक्ति से प्रेरित यह छोटी सी कविता से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। है इसके केंद्र में देशभक्ति ही, किसान इसके केंद्र में है। कृषि प्रधान देश का नायक किसान इसके केंद्र में है। आंसू इस कविता का शीर्षक है। सदियों से बहाया जा रहा है इन्हें, सदियों से बहाया जा रहा है इन्हें, पर दुनिया बदली नहीं अब तक। जाहिर है हाथों का काम नहीं कर सकते आंसू, जाहिर है हाथों का काम नहीं कर सकते आंसू। वो देखो किसान ने मोड़ दिया पानी खेत की ओर, वो देखो किसान ने मोड़ दिया पानी खेत की ओर। बड़े बड़े ढेले घुलने लगे बेआवाज, बड़े बड़े ढेले घुलने लगे बेआवाज। ये बड़े बड़े ढेले क्या हैं? ये हमारे सामाजिक विकास के अवरोध हैं, जो हमारे श्रमवीर जो किसान हैं ऐसे कितने ही सामाजिक अवरोधों को पार करते हुए कृषि क्रांति की ओर अग्रसर हुए हैं। तो उनको सलाम करते हुए मैं अपनी कविता को आगे बढ़ाता हूँ। श्रावण का महीना है, सावन का महीना है, और सब और खुशी का माहौल है। शिव का महीना कहलाता है, प्रकृति का महीना कहलाता है, यह महीना कहलाता है नई उमंग का, नए उत्साह का, संयम का भी। संयम का इसलिए कि इसी माह में व्रत, तीज, त्यौहार, उपवास भी आते हैं। और उपवास क्या सिखाते हैं? हमें संयम की बात सिखाते हैं। तो यह नए उत्साह से भरी हुई एक कविता आपके सामने सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है कल्ले फूट रहे हैं, कल्ले फूट रहे हैं। डोकरे का पोपला मुंह हंसी से भर गया, चौंक कर देखा गिलहरी ने, दौड़ गई अकारण चार छह दफे पेड़ के नीचे ऊपर। गुन्ना रस्सी तुड़ाकर भागा, हुमस कर दे मारा मुंह गैया के थनों से। ग्वालन ने रस्सी नहीं खींची, ग्वालन ने रस्सी नहीं खींची, न दौड़ी न चिल्लाई, गैया ने हरियाई आंखों से देखा उसे। पीले पड़ते पत्तों में न घबराहट थी न बेचैनी, आस से देख रहे थे फूटते कल्लों को, कोपलों को, आस से देख रहे थे फूटते कल्लों को, कल्ले भी फूट रहे थे बेखौफ बिना किसी की इजाज़त लिए, बिना किसी की इजाज़त लिए। तो ये श्रावण का महीना हरियाली का महीना है, श्रावण का महीना प्रकृति से जुड़ने का महीना है, श्रावण का महीना प्रकृति को बचाने का महीना है। तो इसी महीने की शुरुआत हम करते हैं सृजन उत्सव से, क्योंकि जो सृजन है वही कुल मिलाकर सृष्टि को बचाए रखेगा। तो कविता का शीर्षक है सृजन उत्सव। एक उत्सव उसके भीतर उमड़ रहा, एक उत्सव उसके भीतर उमड़ रहा, झांक रहा आंखों की खिड़की से, चमक रहा गालों पर, कानों में सीटी सा बज रहा, बेतहासा हंसने के बाद जैसे हो जाता है चेहरा, वैसा ही हो गया है कुछ। रंगों के लिए मिट्टी के लिए, रंगों के लिए मिट्टी के लिए, फलों के लिए उसकी चाह मौसम की हदबंदी से बाहर है। कितने नज़दीक वह प्रकृति के, कितने नज़दीक वह प्रकृति के, नहीं प्रकृति ही है वह, नहीं प्रकृति ही है वह, उससे बड़ा कौन सृजन करता इस समय, उससे बड़ा कौन सृजन करता इस समय, इसे ही वह गुनगुना रही है, सारे ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी चौघड़िया देख रहे हैं, सारे ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी चौघड़िया देख रहे हैं, शमशेर के कासे के वे दो ठोस बेलोस, सबसे ज़्यादा शामिल उसके इस उत्सव में, सबसे ज़्यादा शामिल उसके इस उत्सव में, एक उत्सव उसके भीतर उमड़ रहा, एक उत्सव उसके भीतर उमड़ रहा। तो सृजन को सलाम करते हुए अगली कविता इसी प्रकृति के परिवेश पर, जिसका शीर्षक है फूल ने कहा शुक्रिया। फूल ने कहा शुक्रिया। फूल ने ही ध्यान मेरा खींचा, फूल ने ही ध्यान मेरा खींचा, कहा शुक्रिया। बजाय इसके कह सकता था वह धन्यवाद, पर भाषा शास्त्रियों से बेपरवाह कहा उसने शुक्रिया ही, कहा उसने शुक्रिया ही। फूल था वह। मुझे बीती शाम याद हो आई, मुझे बीती शाम याद हो आई, कराह में डूबी, कराह में डूबी कातर आवाज, वह पौधा जिस मिट्टी में खड़ा था, फटी बिवाई सी जगह जगह वह मिट्टी, आँखों में शरीर चेहरे से मुरझाना साफ पड़ा मैंने, मुरझाना साफ पड़ा मैंने, कि कुछ ही दिन है उसके पास, उसकी कातर आवाज़ सुनी मैंने, आया मैं अपने से बाहर, तमाम दुनियावी मोह पास छोड़, एक डोल पानी लाया, एक डोल पानी लाया, डाला उसकी जड़ों में, हलक से जैसे गटकने की आवाज़ आती है, वह आवाज़ सुनी मैंने, हलक से जैसे गटकने की आवाज़ आती है, वह आवाज़ सुनी मैंने मिट्टी की बिवाई में, मलहम सा रच गया पानी, मिट्टी की बिवाई में मलहम सा रच गया पानी, आँखों में जान आई, शरीर में सिहरन, उसके अपनत्व को महसूसा मैंने, उसके अपनत्व को महसूसा मैंने, पर यह तो बीते शाम की बात थी, और आज सुबह फूल ने मुझे कहा शुक्रिया, आज सुबह फूल ने कहा मुझे शुक्रिया। तो जैसा आप प्रकृति के साथ व्यवहार करते हो, प्रकृति तुरंत उसको आपको उसी तरह से, बल्कि उससे ज़्यादा प्रेम में डूबी हुई आपको लौटाती है। अगली कविता जिसका शीर्षक है जंगल। जंगल अपने आदिम रूप में मगन, अपने आदिम रूप में मगन, आदि देव की तरह समाधिस्थ, पक्षियों की आंख से देखते कभी कभी आकाश की ऊंचाइयों तक फैले वृक्ष से, निहारते स्वयं को एक लतर के कान में हवा कुछ कहती, एक लता के कान में हवा कुछ कहती, वृक्ष ही नहीं समूचा जंगल हाँ में हाँ मिलाता, हरहराता। हरहराने की आवाज में आवाज मिलाते वन प्राणी, जिनके बगैर जंगल नहीं है जंगल। देखो एक पत्ती ने घूंघट हटाया, एक कली थोड़ा फूल की तरह होने को हुई, एक फूल फल बनने की जल्दबाजी में, एक फूल फल बनने की जल्दबाजी में, एक फल की आतुरता तो देखो, बीज बनना चाहता है वह, समूचा जंगल दोहरा रहा खुद को, मगन अपने इस रूप पर आदि देव की तरह जंगल, मगन अपने इस रूप पर आदि देव की तरह जंगल। आदि देव से आपको शिव की याद नहीं आई क्या? आदि देव शिव ही तो हैं। एक कविता और जो इन्हीं वृक्षों की महानता पर केंद्रित है, जिसका ध्येय वाक्य है, जिसकी थीम है, बिना जमीन में धसे महानता पाई नहीं जा सकती। तो कविता का शीर्षक है बिना जमीन में धसे। पेड़ जितने जमीन से ऊपर उतनी ही जड़े उनकी सघन गहरी, तीन पेड़ वे नीम पीपल बरगद, तीन पेड़ वे नीम पीपल बरगद, एक दूसरे से सटे सटे उतने नहीं, जितने एक दूसरे के लिए जगह बनाते हुए, जितने एक दूसरे के लिए जगह बनाते हुए, एक सी रसद पहुंचाती जड़े, एक सी रसद पाते तीनों, छोड़ते नहीं कतई अपना स्वाद स्वभाव, न जमीन भेदभाव करती, न करते खाद पानी भेदभाव, पर बरगद उनमें बड़ा भारी भरकम जटाए कराती इस बात का एहसास, वह जितना ऊपर बाहें फैलाता जटाएं उतनी जमीन का रुख करती, जटाएं उतनी जमीन का रुख करती, जमीन से मिलना नहीं धसना चाहती उनमें, धसना चाहती उसमें। जटाएं जानती है बिना जमीन में धसे कोई कैसे उठ सकता है ऊपर, बिना जमीन में धसे कोई कैसे उठ सकता है ऊपर, कोई कैसे हो सकता है इतना विशाल बिना जमीन में धसे। तो जंगल की बात चल रही है, तो जंगल में जिसको हम विलायती इमली कहते हैं उसको कुछ कहते हैं जंगल जलेबी, और जिसको हम कहते हैं खुजली उत्पन्न करने वाली इमली जैसी शक्ल वो कहलाती है संस्कृत में कपिकच्छू। तो अगला शीर्षक यही है कविता का, जंगल जलेबी और कपिकच्छू। कपिकच्छू और जंगल जलेबी दोनों हैं सामने, एक झाड़ियों से ध्यान खींचती दूसरी कद्दावर पेड़ से, हल्का सा मुख खोल सफेद दंत बताती जैसे, हल्का सा मुख खोल सफेद दंत बताती जैसे, जैसे परख रही हो देखे कपिकच्छू जो बस हाथ भर दूरी पर है, और जंगल जलेबी, हाँ हाँ वही विलायती इमली जिसे पाने की कोशिश में बांस उस पर तार से बनी लगी, तब कहीं जाकर हासिल जंगल जलेबी, कोशिश में हासिल नहीं तो खुजली हाथ भर दूर, नहीं तो खुजली हाथ भर दूर। तो ये सब कुछ जो है प्रकृति और प्रेम से जुड़ी हुई बातें हैं, तो प्रेम पर केंद्रित कविता आपके सामने रखता हूँ। कविता है बिना रीढ़ प्रेम, बिना रीढ़ प्रेम। प्रेम जरूरी और आग भी, प्रेम जरूरी और आग भी, पर ज़्यादा जरूरी है रीढ़, रीढ़ यानी दृढ़ता। प्रेम जरूरी और आग भी, पर ज़्यादा जरूरी रीढ़। रीढ़वान प्रेम आग जिसे पार लगाने बेताब, आग का दरिया जिसे पार लगाने बेताब, आग का दरिया। बिना रीढ़ प्रेम बहस, बिना रीढ़ प्रेम बस मांस का लोथड़ा, और बिना रीढ़ आग बस फुस, बस फुस। तो अगली कविता जो है वह इसी प्रेम पर आधारित है, पर कागजी प्रेम पर नहीं। दरअसल हो ये रहा है कि कागजी और प्रेम, कागजी यानी जो जल्दी नष्ट हो जाए, लेकिन प्रेम तो बड़ा स्थायी भाव है, राधा और कृष्ण का हो, और उससे भी बड़ा देश प्रेम का जो जज्बा है वह, जिसके पीछे तो हम सब निक्षावर हैं, समय आने पर इस देश के लिए वह सब कर सकते हैं जो एक नागरिक को करना चाहिए। अगली कविता है मेरी कागज़। इस तरह से कागजी चीज़ें नहीं होना चाहिए, वही बताता है कागज़। कागज पर प्रेम हुआ कागज पर अलगाव, कागज पर घर बसाया कागज पर ढाया उसे, कागज पर सूखा राहत कागज पर ही अतिवृष्टि, कागज पर बनी योजना कागज पर आई तरक्की, कागज पर होरी मुस्कुराया कागज पर आई शांति, कागज पर अफसर ने कहा, कागज का पेट भरो, कागज पर भविष्य बिगाड़ा, कागज पर संवारा उसे, कागज पर बांध बने, कागज पर पुल अस्पताल, कागज पर बने स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 100% बताई, कागज पर बटा मध्यान्ह भोजन, कागज पर बच्चे हुए पुष्ट, कागज पर बटी राहत, कागज पर पुनर्वसाहट, कागज पर गिले, कागज पर गिले शिकवे, कागज पर मिले आम खास, कागज पर हुई घोषणा, कागज पर ही हुआ अमल, कागज पर हुई घोषणा, कागज पर ही हुआ अमल, कागज ने अपने होने को सोचा, कागज को याद आया वृक्ष, कागज को याद आया वृक्ष। ये जो वृक्ष है ना, ये हमारे जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है। यदि वृक्ष है, यदि जंगल है, यदि प्रकृति है, तो हम सब हैं, अन्यथा हम नहीं। अब इन सब बात को परखना, तो परखने के लिए आपको एक नज़र चाहिए। उसी नज़र की तरफ ये कविता इशारा करती है। परखना, परखना किसी को तो उसकी मिट्टी से परखना, परखना किसी को तो उसकी मिट्टी से परखना कि किस मिट्टी का बना है। जैसे बीज परखता है, किसान परखता है, जैसे मटका खरीदते टुनकाते उसको कुम्हार से पूछते हैं कहाँ की मिट्टी का है। पर जो चट्टान को चाक कर पैर रख उस पर अंकुराया फला फूला, उसे परखने के पहले दसियों बार सोचना, उसे परखने के पहले दसियों बार पर सोचना। तो जो जवान, जो किसान अपने श्रम से अपने व्यक्तित्व का निर्माता है, उसके परखने की बात चल रही है ये। अब अगली कविता है जो श्रम को ही महिमा मंडित करती है, उसका शीर्षक है नाल। घोड़े के पेड़ में जो नाल होती है ना, तो उसका शीर्षक है नाल। श्रम से डरता है अपशकुन, श्रम से डरता है अपशकुन, लोहार ने तपाया लोह टुकड़ा लालचट, लोहार ने तपाया लोह टुकड़ा लालचट, आकार दिया उसे फिर मिट्टी के चूल्हे सा, तारकोल की सड़क पर घोड़े के पैर में यूं चमकता यह टुकड़ा, जैसे पसीना चमकता है भाल पर, डरता है अपशकुन इस चमक से, डरता है अपशकुन इस चमक से, ठोकी जाती यह जो दरवाजे बीच, बिदकता शनि इससे, करता दूर से सलाम, हिनहिनाता है घोड़ा, फड़कती लोहार हाथ मछलियाँ, श्रम से बिदकते मुए ये सब, वरना इस लोह टुकड़े में धरा क्या है, श्रम से बिदकते मुए ये सब, वरना इस लोह टुकड़े में धरा क्या है। अगली कविता है, जो कभी लगता था जीवन है, जो कभी लगता था जीवन है, मैं कुछ नहीं आप ही आप हैं सर्वत्र, मैं कुछ नहीं आप ही आप हैं सर्वत्र, चढ़ा टीला फांदा नाला, चढ़ा टीला फांदा नाला, रपट गया मैं चाहते न चाहते, नदियां मेरे आड़े नहीं आई, बताया मुझे रास्ता, ऋतुओं ने तैयार किया मुझे हर आड़े वक्त के लिए, ऋतुओं ने तैयार किया मुझे हर आड़े वक्त के लिए, दोस्तों ने दिए गजब अनुभव, विस्मित चकित नहीं मैं, उन्हीं ने बनाया मुझे घिसा कानस से, उन्हीं ने बनाया मुझे घिसा कानस से, अतिरिक्त मोह जो दिख रहा था गूमड़ सा मवाद था, कानस के स्पर्श भर से बूंद बूंद दर्द दर्द मवाद बह गया, छेनी छेनी वह जो बेडोल अनावश्यक अनुराग राग विराग तृष्णा उस पर रखी थी संडासी से पकड़, वह जो बेडोल अनावश्यक अनुराग राग विराग तृष्णा उस पर रखी थी संडासी से पकड़। क्या समय था वह, हथौड़ी की चोट छेनी पर थी, निकल गया अनावश्यक हिस्सा, जो कभी लगता था जीवन है, जो कभी लगता था जीवन है। हम सबके साथ ऐसा होता है, जो हमारे में तृष्णा है, राग विराग है, द्वेष है, ये अनावश्यक हमसे जुड़े हुए हैं, उसी तरफ यह इशारा था इस कविता में। और अगली कविता है किशोर कुमार खंडवा वाला। यह किशोर कुमार, जिसका डंका आज विश्व में बज रहा है, किशोर कुमार। वह नदी की तरह जुड़ा रहा उद्गम से, वह नदी की तरह जुड़ा रहा उद्गम से, जितना आगे बढ़ता रह रह कर लौटता उतना ही, उस शोर में कुछ चुभता था उसे, कमीज में खुशी आलपिन की तरह। महानगर महासागर जहां अपना संताप पछीटता है निरंतर, खारे पानी का रेला दूर तक भिगो जाता किनारे को, एक कोना रह जाता भीगने से, उस कोने में जाने की इजाजत उसने किसी को नहीं दी। उसी कोने को ज्ञान रंजन कहते हैं कबाड़ खाना, एक रचनाकार एक कलाकार जहां सुस्ताता ताजदम होता है। उस जमघट में भीड़ कितना खेटते हुए जाती, पर छू नहीं पाता कोई भीतर तक, तब याद आती उसे कस्बे को छूकर जाती आबना की, जो छूती ही नहीं केवल महसूस होती है भीतर तक। वह एक विशाल पेड़ जो अपने समूचे डील डोल को समेट बीज बनने की जल्दबाजी में, वह जब कहता किशोर कुमार खंडवा वाला, लगता जैसे लौट रहा है जंगल जड़ों की ओर, लगता है जैसे लौट रहा है जंगल जड़ों की ओर। आसमां संभाल नहीं सका उसे, जमी तो उसकी अपनी है। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे काव्य पाठ प्रताप राव कदम से। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

अभी आप सुन रहे थे ये मालवी लोकगीत सपना सिसोदिया और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं कुंजलता वर्मा।

कुंजलता वर्मा के गाए सूरदास के इसी भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए गजानन बारूडे का शहनाई वादन, राग है अहीर भैरव। तबले पर संगत कर रहे हैं सारंग लासुर।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गजानन बारूडे का शहनाई वादन, राग था अहिर भैरव, तबले पर संगत कर रहे थे सारंग लासुरकर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 10 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के हालिया दौरे की। श्री सिंधिया ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित अशोकनगर रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही बहादुरपुर कृषि उपज मंडी में कृषि सम्मेलन में किसानों से संवाद किया। जिला मुख्यालय पर दिशा की बैठक में करीब 5 से 6 हजार करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम सेमरखेड़ी में विद्युत सब स्टेशन और चंदेरी के मां जागेश्वरी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। इसी दौरान श्री सिंधिया ने बताया कि अशोकनगर जिले में 6 गीता भवनों को मंजूरी दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बारीलाल अहिरवार ने भी जिले का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम उज्ज्वला, लाडली बहना और समग्र पेंशन योजना के तहत हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की। जिले के 25,266 हितग्राहियों को करीब 1,51,59,000 रुपए की राशि मिली। इसके अलावा अप्रैल और मई की उज्ज्वला और लाडली बहना योजना की राशि के रूप में करीब 10,38,00,000 रुपए भी अंतरित किए गए। राष्ट्रीय भावना से जुड़े हर घर तिरंगा अभियान के तहत चंदेरी के शासकीय हाई स्कूल फतेहाबाद में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्कूल स्टाफ ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। रैली के दौरान देशभक्ति के संदेश भी दिए गए। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक दिनेश दुबे ने जिले का दौरा किया। उन्होंने लखपति दीदियों से संवाद करने के साथ प्राणपुर में चंदेरी साड़ी बनाने वाले हैंडलूम का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अशोकनगर जिले ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में 100% उपलब्धि हासिल की है। अभियान के दौरान जिले में 1,57,161 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर पालिका का अमृत महाअभियान जारी है। इसके तहत शिव टोरिया और टिंचिंग ग्राउंड परिसर में 21 पौधे लगाए गए हैं। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान भी चल रहा है। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके तहत मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी अशोकनगर ने प्रदेश स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। जुलाई में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के प्रदर्शन के आधार पर जिले को प्रदेश में 5वें स्थान मिला है। रोजगार आयुक्त ने कलेक्टर साकेत मालवीय को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। जिले में हर महीने युवा संगम के जरिए युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिले में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी जारी है। राजस्व विभाग ने ग्राम शंकरपुर पचार में कार्रवाई कर करीब 2,20,00,000 रूपये की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। यहां सरकारी जमीन पर सड़क डालकर तार फेंसिंग की गई थी और अवैध कॉलोनी काटने की तैयारी थी। अपराध पर लगाम लगाने के लिए अशोकनगर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जाली भारतीय नोट चलाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई में 87,700 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं नशे के खिलाफ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। लोगों को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। दूसरी ओर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अशोकनगर में सांदीपनी महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली सांदीपनी शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला भी वर्चुअली शामिल हुए। बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अशोकनगर में विद्युत वितरण कंपनी का संपर्क अभियान भी चल रहा है। अभियान के तहत 7 स्थानों पर लगाए गए शिविरों में 387 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 358 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शिविरों में 187 घरेलू, 78 कृषि उपयोग के नए बिजली कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आपने सुनी अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख डॉक्टर नीरज कुमार शुक्ल का था, वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी
2: का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को माजिद खान का नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले हमारे जो नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं और हम उन्हें फ़ोन नंबर्स बता दें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी पसंद के नगमे को सुन सकते हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का। आइए देखते हैं हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बात कर रहे हैं फूलचंद जी?
1: जी जी जी जी जी,
0: हाँ जी। तो हमारा आकाशवाणी इंदौर छतरपुर जिले में आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है? मोबाइल ऐप पर सुनते हैं आप?
1: जी नहीं, मैं रेडियो पर सुनता हूँ, मीडियम पर।
0: अच्छा अच्छा, मीडियम वेव पर रेडियो लगाकर सुनते हैं।
1: जी जी जी, और तो, बहुत बढ़िया, बहुत साफ बोलता है, बढ़िया जो है।
0: जी जी जी,
1: और खजुराहो, बिल्कुल हमारा खजुराहो, आपने सुना हो तो खजुराहो बिल्कुल हमारे पास ही में है, हमारे गाँव की।
0: जी जी जी बिल्कुल, खजुराहो आपके छतरपुर के पास ही है और बहुत फेमस जगह है पर्यटकों के लिए।
1: जी जी,
0: चंदेल राजाओं के मंदिर भी हैं। जी,
1: आपका शुभ नाम?
0: मैं माजिदा खान बात कर रही हूँ।
1: बहुत बहुत बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, और बताएं कैसा है छतरपुर जिले का इस समय रुख मौसम का?
1: छतरपुर जिले का मौसम तो बहुत, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, बरसात जो है हमारे यहाँ बिल्कुल कम से कम।
0: जी,
1: अभी जो है इतनी बरसात के बाद जो है अभी खेतों में पानी नहीं भरा, मतलब निकला है बाहर।
0: हम्म,
1: तो पानी की समस्या हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा है अभी।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: मतलब अभी बारिश की शुरुआत वहाँ नहीं हुई है ऐसा आप बता
1: तो,
0: रहे?
1: पानी तो बरसा, लेकिन बहुत बिल्कुल थोड़ा सा बरसा, ज्यादा नहीं बरसा, मतलब जो है खेती के हिसाब का पानी है, ज्यादा पानी नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, पानी की मतलब कमी है आपको ऐसा लग रहा है?
1: हाँ जी, पानी की कमी है, और पानी की कमी इतनी नहीं है, बहुत ज्यादा है अभी, जितने तालाब वगैरह हैं सब खाली पड़े हैं और भी खेतों में पानी भी नहीं मतलब भरा है।
0: अच्छा अच्छा, तो छतरपुर जिले में पानी की बहुत कमी है, है ना? तो आप क्या करते हैं जी? फूलचंद जी, आप क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ, अन्नदाता हूँ।
0: जी जी, तब तो आप पानी की समस्या से बखूबी वाकिफ हैं कि पानी की आवश्यकता है कि नहीं है, है ना?
1: जी जी बिल्कुल, हम लोगों को जो है, किसानों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारी फसलें जो है सूख रही हैं।
0: जी,
1: तो पानी बरस जाए तो भगवान की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है।
0: जी जी जी बिल्कुल, भगवान की कृपा आप पर रहेगी। और अभी आप बता दें कि आप कौन सा गीत इस समय सुनना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल, फिल्म का नाम है हमसे न टकराना।
0: जी,
1: और गीत के बोले कि मेरा प्यार है सीधा साधा, तू बाधा तोड़ ना देना, मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़ी, तू मुझको छोड़ ना देना।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे हमसे न टकराना फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत है जो आपने पसंद किया है।
1: और हमारे कुछ मित्र हैं साथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोल लूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने मित्रों को याद कर सकते हैं। जी,
1: सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा।
0: जी धन्यवाद।
1: और हमारे राजू यादव जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी हैं, और भी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा, और जितनी माताएं बहनें सुन रही सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी जी बिल्कुल, तो अपने सभी साथियों के साथ आप सुनिए आपकी पसंद का ये गीत जो आपने पसंद किया है, लीजिए सुनिए। धन्यवाद आपको फोन करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: हेलो,

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं?
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का, इंदौर से।
0: पालदाना का इंदौर से
1: जी मैडम,
0: अमीना
1: अमीना
0: बी
1: जी।
0: मंसूरी बात कर रही हैं जी।
1: हाँ जी, हसीना जी की मम्मी बोल रही हूँ।
0: अच्छा, जी बताएं
1: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
1: हम भी अच्छे हैं मैडम, आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और आज
1: माशाल्लाह, अल्लाह का
0: बताएं
1: शुक्र है।
0: जी, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: कर्मा का, कर्मा का,
0: अच्छा,
1: कर्मा का
0: कर्म का
1: सुना दीजिए। और गाने
0: जी,
1: के बोले, हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए।
0: बहुत खूबसूरत सा गीत आपने पसंद किया है
1: और
0: जी।
1: आप शेर शायरी तो मेरे को ज्यादा, मतलब आवाज थोड़ा ज़रा ऐसी चल रहा है मैडम, शेर शायरी ज्यादा तो नहीं आती, पर एक लफ्ज जरूर बोल देती हूँ।
0: जी, नहीं कोई बात नहीं, जो
1: हाँ,
0: आता है
1: नहीं
0: जी।
1: बोल देती हूँ, आपको आपको बोल देती
0: हाँ
1: हूँ।
0: जी जी जी
1: दूर
0: जी
1: रहो, दूर रहो या
0: जी
1: पास रहो, दूर रहो या पास रहो, लेकिन हमेशा हमारे दिल में रहो।
0: अच्छा
1: बस
0: बहुत अच्छी
1: इतना
0: बात, बहुत अच्छी
1: सा।
0: बात आपने कही है। और बिल्कुल, हम सभी श्रोताओं के दिल में रहते हैं और सभी श्रोता भी हमारे साथ हमारे दिल में रहते हैं। और
1: हाँ जी मैडम,
0: हमारा और श्रोताओं का साथ यूं ही बना रहे, ऐसी
1: जी
0: हम
1: मैडम,
0: ईश्वर से हमेशा कामना करते हैं
1: जी मैडम।
0: जी। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत जो आपने सुनना चाहा है, कर्मा फिल्म से।
1: हाँ जी मैडम, कर्मा का। हाँ
0: बिल्कुल, धन्यवाद आपको फोन करने के लिए।
1: हाँ थैंक यू मैडम।
2: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार मुझसे।

0: क्या करते हो प्यार? अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी?
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया, आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं, आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं, आई लव यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: की बहन प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और जय
1: जी
0: हिंद, बताएं। जी
1: मैं राजू यादव, ग्राम उपरेका, श्रीरामपुर डेरा, सरी लराठ, मुस्कुरा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: बहुत बढ़िया, आपने तरीके से परिचय अपना बहुत ही खूबसूरत तरीके से दे रहे हैं आप।
1: ये मैंने रेडियो का ही कमाल है, तो हम लोग इतना बोलने लायक हो गए।
0: बहुत अच्छी बात है, और हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा लगता है कि आप कुछ कर पा रहे हैं श्रोताओं के लिए।
1: जी बहन जी,
0: तो बताएं।
1: मूवी का नाम है जागृति, गीत के बोल होंगे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम।
0: बिल्कुल, आप तो गाते भी हैं।
1: रेडियो के साथ गुनगुनाते रहते तो गाते भी हैं।
0: रेडियो के साथ गुनगुनाते रहते हैं। और कब से कब तक आप रेडियो सुनते हैं?
1: बहना जी, हम 1993 से रेडियो आज तक सुन रहे हैं।

0: जी, तो सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: जी बहना जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: कुछ
0: और
1: मित्रों के नाम याद करें क्या बहन?
0: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप अपने मित्रों को याद।
1: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के श्री गौतम राय भोले जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं,
0: जी
1: गुलचंद पाल जी हैं मनकारी से,
0: हाँ जी,
1: सतीश रघुवंशी जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो आपका कार्यक्रम बहन दिल से सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। और हम भी दिल से आपको ये गीत सुनवाने जा रहे हैं जो आपने पसंद किया है फिल्म जागृति से, और आपके सभी मित्र मंडली के साथ सुनिए ये गीत।
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: नमस्ते।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो, आइए देखते हैं हमारे कौन से श्रोता फोन पर हैं। हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
4: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, कानपुर से, उत्तर प्रदेश कानपुर के पास मेरा जिला पड़ता है फर्रुखाबाद, वहाँ से बात कर रहा हूँ।
3: उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं जी?
4: कानपुर से फर्रुखाबाद जिला अनेक दूरी फैसला है, लेकिन मैं कानपुर बताता हूँ कि कानपुर हर लोग जानते हैं, फर्रुखाबाद ना जानते नहीं है, इसलिए कानपुर बताता हूँ।
3: हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। और बताएं क्या नाम है आपका?
4: मैं सतीश बात कर रहा हूँ।
3: जी जी जी,
4: और कौन? हाँ जी, मेरे इधर बारिश हो रही है मैडम जी, और 15 अगस्त पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि झंडा अंडा ले आए हैं, बच्चों के साथ जाएंगे स्कूल में, तो बहुत अच्छा झंडा फहराएंगे जाके, और छोटा या जहाँ बड़ा झंडा हो तो झंडा का अपना संभाल के रखना चाहिए, कहीं भी डरा हो तो उसको और उठा के साफ सफाई से अपना घर पे रखना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान की मोहर होती है राष्ट्रीय,
3: जी जी,
4: तो कहीं भी गंदा अंदर ना पड़े, कहीं भी रोज।
3: कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज?
4: आज एक गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है फना, गाने बोल देश रंगीला रंगीला।
3: देश रंगीला, बिल्कुल फना फिल्म का ये गीत बहुत खूबसूरत सा, लीजिए सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद जी।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार माधिया जी।
0: नमस्ते।
1: वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम। कैसे हैं आप?
1: बड़े, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: आपके प्रोग्राम सुन के, पुराने गीत सुन के बहुत खुशी होती है हमको।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।
1: भंडारे सुजामा नगर से बोल रहा हूँ
0: जी। बिल्कुल, मैं आपको पहचान गई हूँ, हमारी निमेशोत्ता को, सुदामा नगर इंदौर से। हाँ, अनिल भंडारे जी। बिल्कुल
1: जी जी जी। हाल चाल आपके? बढ़िया
0: जी जी जी। बिल्कुल,
1: आज वंदे मातरम के नारा पूरे देश में गुंज रहा है।
0: बिल्कुल जी,
1: हर जगह हर चौराहे पर झंडे फहराए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और हम हर घर तिरंगा अभियान भी इस समय मना रहे हैं। हर घर तिरंगा जी।
1: हाँ, कल की तैयारी बहुत जोरदार हो रही है।
0: बिल्कुल, होना ही चाहिए, हमारा स्वतंत्रता दिवस है और तैयारी तो जोरदार ही होना चाहिए जी।
1: हम सोचा लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, कल के कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं
0: जी।
1: हम झंडे में झंडे अभियान में शामिल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, होना ही चाहिए और हमारे सभी भारतीयों का ये कर्तव्य है, हमें इस अभियान में भी शामिल होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस भी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए।
1: हमारा देश आजाद है और आजाद रहेगा और हर जगह तिरंगा फहराते रहेगा, ये कामना करते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: आपको स्वतंत्रता के बहुत बधाई है।
0: बधाई हम स्वीकार करते हैं और अपने सभी जो हमारे साथी हैं उन तक पहुंचाते हैं जी।
1: धन्यवाद
0: जी, बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज आप?

0: हेलो, हाँ जी भंडारी जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आनंद मटका,
0: आनंद मटका जी, आनंद मटका कौन सा गीत?
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम। लता
0: वंदे मातरम जी, बिल्कुल
1: मंगेशकर, लता मंगेशकर हेमंत कुमार ने गाया है
0: जी।
1: और 1960 की फिल्म है।
0: हाँ जी, आप तो पुरानी फिल्मों के बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। बहुत सारी बातें आपको पुरानी फिल्मों के बारे में मालूम होती है, मैंने सुना है आपको जी। हम आपको सुनवा रहे
1: धन्यवाद,
0: हैं आनंद मठ फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद आपको
0: आप हमारे सुधी श्रोताओं में शामिल हैं, लीजिए
1: और
0: सुनिए।
1: आपके आपको बधाई दे रहा हूँ सभी के।
0: जी, बिल्कुल हम बधाई स्वीकार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको फ़ोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैम, वंदे मातरम।
0: जी वंदे मातरम बोले।
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप?
0: हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ जी। अशोक जी बताएं
1: मैं
0: आप
1: भी
0: कैसे
1: ठीक हूँ।
0: हैं।
1: मैं भी ठीक हूँ। बारिश का मौसम है,
0: जी
1: बारिश हो रही है,
0: हाँ जी
1: सुहावना मौसम है मैडम। कल स्वतंत्रता दिवस है, आपको और सभी पूरे आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी जी जी
1: जी मैडम, तो स्वतंत्रता दिवस

0: तब जब से अपना देश आजाद हुआ बहुत याद आती है, मनाते भी है
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: आप
0: मैडम।
1: जी जी
0: बचपन
1: जी
0: से सभी यादें जुड़ी हुई हैं। स्कूल जाते थे जब भी झंडा फहराया जाता था,
1: जी जी जी
0: और मैं इनकम टैक्स टर्मिनल में को सर्विस करता हूँ, मेरी इंदौर में भी शाखा है जी।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: तो मैंने झंडा फहराया, ये भी हमें सौभाग्य मिला है, कई सालों फहराया ऑफिस में भी
1: अच्छा अच्छा जी
0: जी। तो अब 3 साल हो
1: जी
0: गए रिटायरमेंट के, अगर याद आता है,
1: हाँ जी
0: नहीं तो
1: वो
0: यहाँ पर अपने चौराहे मोहल्ले में शामिल हो जाता
1: नहीं हम
0: जी
1: अपनी सहभागिता लगातार दिखाते रहें,
0: जी
1: सेवाओं
0: तो
1: से
0: अच्छा लगता
1: रिटायरमेंट
0: जी
1: हो जाता है, लेकिन हमारी जो देशभक्ति के भाव हैं, हमारे स्वतंत्रता दिवस को मनाने का जो
0: जी
1: उत्साह है वो तो कायम ही रहता है हमेशा,
0: जी
1: और
0: मैडम
1: कायम
0: जी
1: रहना
0: जी जी
1: चाहिए। जी
0: मैडम जी, तो गाना सुनवा दीजिए 10 मूवी का।
1: जी जी बिल्कुल, कौन सा गीत?
0: सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो
1: जी बिल्कुल, हम आपको
0: जी
1: सुनवाएंगे। और लीजिए
0: जी
1: सुनिए फिल्म 10 का ये गीत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: धन्यवाद, शुक्रिया आपको फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो,
1: जय माता दी।
0: नमस्ते। जय माता दी, बोलें, कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा
0: जी।
1: मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसमेल बुगला।
0: जी जी जी, जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। हाँ, स्वागत है आपका MH हॉटलाइन कार्यक्रम में। जी
1: जी, आपको और तमाम श्रोताओं को कल स्वतंत्रता दिवस है, तो उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामना मैडम।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं हम प्रेषित कर रहे हैं। बताएं
1: जी,
0: और
1: कैसे मैडम आप, वहाँ मौसम कैसा हो रहा है?
0: वहाँ मौसम तो मिला जुला है, कभी धूप कभी बारिश, ऐसा मौसम चल रहा है फिलहाल। और आपके जयपुर का हाल बताएं।
1: जी मैडम, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, परसों दिन बारिश हुई थी मैडम, और 2 दिन हो गया तो धूप है मैडम।
0: अच्छा, हाँ जी, अभी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? जी
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है माँ तुझे सलाम, और इसका टाइटल सॉन्ग सुनूंगा मैडम, माँ तुझे सलाम।
0: जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे माँ तुझे सलाम का टाइटल सॉन्ग।
1: जी मैडम,
0: लीजिए सुनिए, आपने जो गीत पसंद किया है।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका?
1: उर्मिला।
0: उर्मिला, उर्मिला बात कर रही हैं। अच्छा
1: हाँ।

0: कहाँ से बात कर रही हैं उर्मिला?
1: जिला धार तहसील कुक्षी।
0: कुक्षी धार से बात कर रही हैं?
1: हाँ।
0: जी
1: हाँ।
0: और आप रेडियो सुन रही हैं अभी?
1: हाँ।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: सनम फिल्म का है, आँखों में नींद या दिल ने करार।
0: हाँ जी बिल्कुल, हम आपको सुनाएंगे ये गाना, सनम फिल्म का। नहीं नहीं बिल्कुल, आपको हम जरूर सुनवाएंगे ये गीत जो आपने पसंद किया है।
1: हाँ।
0: और क्या करती हैं आप?
1: कोई नहीं, खेती किसानी।
0: चलिए ठीक है, आप खेती किसानी के कामों के साथ सुनिए अपनी पसंद का गीत उर्मिला जी। नमस्ते।
1: हाँ। हाँ।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? एमएच हॉटलाइन में स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया मैडम। मैं कश्मीर सोना मरक से आपका निमिष श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ अहमद रीना बात कर रहे हैं,
1: हाँ
0: कश्मीर
1: कश्मीर
0: गुलमर्ग से बात कर रहे हैं, क्या बात है, बड़ी
1: नहीं
0: खुशी हो रही है।
1: सोना मरक, वो
0: जी
1: तो बारामूला में डिस्ट्रिक्ट में, ये तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सोना मरक।
0: जी जी जी सोनमर्ग से बात कर रहे हैं। ओके
1: हाँ सोनामार्ग से हम
0: हाँ
1: बात
0: जी हाँ
1: कर रहे
0: जी।
1: हैं आपके साथ।
0: जो लतीफ जी, मौसम तो बड़ा सुहाना हो रहा होगा इस समय वहाँ।
1: हाँ इस समय तो मानसून का चलता है, अभी सुहाना मौसम में, 3 दिन से पहले था बारिश, अब भी है थोड़ा कलावड़ है मौसम, अभी
0: जी
1: थोड़ा
0: जी जी
1: बादल ये अभी यहाँ छाया हुआ है।
0: पर्यटकों के लिए इस समय तो बहुत ही
1: अभी तो मैडम
0: जी
1: अभी तो पर्यटक बहुत सारे काम आते हैं, क्योंकि
0: जी
1: अभी यात्रा तो चलते हैं ना, अभी 28 अगस्त को यात्रा रक्षाबंधन के दिन खत्म हो जाएगा।
0: अच्छा, जी
1: हाँ जी उसी वजह से
0: हाँ जी हाँ जी
1: अभी पर्यटक तो बहुत कम आएगा, लगभग तो सितंबर, आखिरी सितंबर में यहाँ पर्यटक सोनामर्ग में आएगा।
0: चलिए
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है, आप ऐसी सुहावनी जगह नेचुरल प्लेस पर रह रहे हैं और वहाँ से हमें याद कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं।
1: हाँ जी
0: और
1: हाँ
0: अभी
1: जी
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मुझे ये गाना सुनना है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन,
0: जी
1: किन्नर की आवाज में ये गाना।
0: मेरा मुल्क मेरा देश, बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे ये गीत।
1: हाँ
0: और
1: जी
0: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
1: ये शायद दिल जले का फिल्म
0: दिल
1: है,
0: जले फिल्म का गीत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हम
1: और
0: आपको
1: मेरे
0: सुनवा रहे
1: साथ
0: हैं।
1: है लोकिंदर वर्मा, नाना खेड़ बस स्टैंड उज्जैन से, और
0: जी
1: रमेश प्रजापति है,
0: जी बिल्कुल, हम
1: और
0: आपके साथियों
1: बाबूजी
0: के साथ
1: शर्मा है।
0: आपको ये गीत सुनवा रहे हैं।
1: थैंक यू मैडम,
0: लीजिए सुनिए। धन्यवाद,
2: शुक्रिया।
0: और क्या,
3: आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: मां जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार, वल्लभ नगर से मैं महेश लायकवाड़ बोल रहा हूँ।
0: महेश जी, जी जल्दी से बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है।
1: जी माँ तुझे सलाम।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गीत, हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है।
1: जी जी
0: धन्यवाद फोन करने के लिए महेश जी।
1: थैंक यू।

0: इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए माजिदा खान को। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: बारिश समय समय पर होती रही, लेकिन इस समय तो धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: अलग अलग मौसम है, यहाँ तो भयंकर बारिश बनी हुई है।
0: दो दिन पहले हो चुकी है, मौसम खुला हुआ है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, बीच बीच में धूप का आना भी जरूरी है।
0: जी, क्योंकि फसल के लिए धूप बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो राजू जी गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
0: बहना जी हमें बॉर्डर थ्री का गीत सुनेंगे, याद आती है तेरी याद आती है।
1: बॉर्डर थ्री, एक मिनट हम चेक कर लें कि ये वाली
0: बॉर्डर
1: मूवी हमारे पास है कि नहीं है। बॉर्डर थ्री तो नहीं दिख रही हमारे यहाँ,
0: तो हिंदुस्तान की कसम जलवा तेरा जलवा।
1: देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता है मिल भी जाए।
0: हिंदुस्तान की कसम जलवा तेरा जलवा,
1: ठीक है ये भी होगा तो हम देखते हैं। हिंदुस्तान की कसम
0: जी, जलवा तेरा जलवा।
1: हाँ हिंदुस्तान की कसम का मिल गया, जलवा तेरा जलवा।
0: जी जी
1: ठीक है, ये आपको सुनवाएंगे और कल के प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
0: नाम नहीं ना शामिल कर सकती।
1: बिल्कुल कर सकते हैं, आप बोलिए किस किस का नाम लेना
0: चाहते हैं। हमारे मित्र श्री अनूप कुमार राजपूत जी ओप्रहका से हैं, बलवान सिंह यादव जी महेश राजपूत जी हैं, और बंडवा से हैं कुशवाहा जी। ये कार्यक्रम बहन दिल से सुनते हैं, ये 10-11 बजे से
1: जी, जी।
0: यानी सुबह से ही सुनते हैं रात्रि तक।
1: चलिए ठीक है, तो फिर है ना राजू जी कल आप अपना प्रोग्राम सुनिएगा, ठीक है?
0: जी बहन,
1: कॉल करने के लिए धन्यवाद
0: जी बहन। जय हिंद जय भारत।
1: जय हिंद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। हाँ
0: स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने में।
1: फोन करें गीत सुनने में
0: डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा?
1: ये डिस्टर्ब है।
0: हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है।
1: आपकी आवाज तो मुझे क्लियर मिल रही है।
0: जी, चलिए बताइए, अपना शुभ नाम बताइए। देवीदास जी। जी देवीदास जी, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि कॉल आपका 1 हफ्ते के बाद ही लग रहा है ना?
1: हफ्ते के बाद के ज्यादा टाइम हो गया।
0: चलिए फिर ठीक है। और सुनाइए देवीदास जी। देवीदास जी, कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: अभी 2-3 दिन से जो पानी आ रहा है था, अभी थोड़ा रिमेन चल रहा है।
0: अच्छा, और क्या काम करते हैं आप? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, गीत बताइए अपनी पसंद का, कौन सा गीत सुनेंगे आप? जी, तिरंगा फिल्म का कौन सा गीत? अच्छा, टाइटल सॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा पाएँ। हाँ, मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे हम दूसरी चॉइस। तिरंगा फिल्म का सिर्फ एक ही गीत यहाँ पर शो हो रहा है, इसे समझो ना रेशम का तार। हाँ, दूसरा बता दीजिए, क्योंकि इसमें एक ही गीत आ रहा है। जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही है। क्रांति का? ओके, क्रांति का तो फिर हम सुनाई देंगे आपको। ठीक है, चलिए। हाँ जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए, और कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत भी सुन सकेंगे और हमारे बीच हुई बातचीत। ठीक है देवीदास जी। जी नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: जी, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते जी।
1: हाँ, फरमाइश है कि बात आपकी गीत हमारे खास।
0: आज आपकी फरमाइश है, आप अपनी पसंद का
1: अच्छा
0: गीत सुन सकते हैं। पहले अपना शुभ नाम बताइए।
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं बहन जी।
0: महोबा से? ठीक
1: जी
0: है,
1: बहन जी,
0: आपका कॉल 1 हफ्ते बाद ही लग रहा है ना।
1: 1 हफ्ते क्या, वैसे करीब करीब 3 हफ्ते हो गए।
0: अरे चलिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। और सुनाइए सुरेश जी, क्या हाल है?
1: तो ठीक है, इस बात का ध्यान भी हम रखते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: 1 हफ्ते क्या, बल्कि 10 दिन बाद, और भी ज्यादा दिन बाद लगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि और भी नए श्रोता जुड़े तो और अच्छा
0: वही,
1: कार्यक्रम
0: ये बात है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि बहुत सारे श्रोता हमसे कनेक्ट हो सके, जुड़ सके, है ना।
1: और कुछ श्रोता ऐसे हैं, वो उनका नाम नहीं लूंगा, कि
0: हाँ जी।
1: वो हफ्ते क्या, वो तो कुछ लोग पैडे ही लगाते हैं, उनका मगर लगता नहीं है, सुनता
0: हाँ।
1: रहता हूँ मैं कार्यक्रम, उनके 2-3 दिन में कॉल आते ही रहते हैं,
0: तो अगर
1: तो
0: कोई
1: इसलिए
0: श्रोता है ना,
1: कार्यक्रम
0: एक
1: के
0: हफ्ते
1: जो।
0: के पहले कॉल लगाता भी है
1: जी,
0: तो हम लोग कॉल नहीं ले पाते।
1: तो बहुत अच्छा किया आपने।
0: ठीक है, चलिए बताइए, अपनी पसंद बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आज आप सुनवा दीजिए रक्षाबंधन का, नहीं के उपलक्ष्य में सुनवा दीजिए कोई भी गीत।
0: कोई सा भी,
1: हाँ, कोई उसका भी।
0: चलिए ठीक है, हम फिर आपको ये गीत सुनवाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम आप जानते ही हैं कि कल
1: हाँ, वो
0: आएगा,
1: तो कल आएगा।
0: है ना। चलिए ठीक है,
1: हाँ,
0: सुरेश कुमार सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के
1: ओके
0: लिए।
1: जी, नमस्कार लेंगे।
0: नमस्ते।
2: नफरत की

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते। हेलो फरमाइश।
0: जी। हाँ हेलो फरमाइश।
1: अच्छा, जी मैं खैरो कला से, ग्राम खैरो कला, जनपद महोबा, उत्तर प्रदेश से रमेश नायक बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी।
1: जी हाँ, आप कौन बोल रही मैडम?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आपसे तो हो गई, एक दो बार बात ही हो चुकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, अपन बात कर चुके हैं इससे पहले भी। कैसे
1: हाँ।
0: हैं आप?
1: ठीक है जी।
0: बारिश हो रही है महोबा
1: हाँ,
0: में?
1: बारिश तो हो रही है यहाँ पे, काफी हो गई जो है। फसल के हिसाब से सही है, वैसे ज्यादा तो नहीं बरसा,
0: हाँ।
1: लेकिन फसल के हिसाब से सही है। जैसे और है, तिली है, और जो है मूंग वगैरह है,
0: जी जी
1: मूंगफली।
0: हाँ बिल्कुल
1: हाँ
0: सही कह रहे हैं। और सुनिए
1: जी,
0: रमेश जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कल आप?
1: आज मैं सुनना चाहता हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में है, जो खिलाड़ी फिल्म का है, कि झूमता सावन देखो आया, बरसा ने बरखा ने प्यार बरसाया।
0: अच्छा, कौन सी फिल्म का है ये?
1: दो खिलाड़ी
0: दो खिलाड़ी। चलिए ये
1: जी,
0: गीत हम देखते हैं कि है कि नहीं।
1: मिल जाए तो बताना,
0: हाँ, और नहीं
1: और ना मिले
0: होगा।
1: तो फिर मैं दूसरा बताऊंगा। एक तो मिल जाएगा मुझे लगता है।
0: हाँ मिल गया, दूर झूमता
1: हाँ
0: सावन
1: सुनिए,
0: देख।
1: फिर आप भी सब लोग सुनेंगे, श्रोता लोग, कितने
0: बिल्कुल
1: प्यारी
0: बिल्कुल
1: आवाज है रफी साहब की।
0: सही बात है, हमारे श्रोताओं के जरिए हमें भी नए नए टाइप के गीत सुनने को मिल जाते हैं।
1: नहीं नहीं कप्तान जी, क्या है आपसे बताएं, आप तो जब खुद स्टेशन पे हो, अनाउंसर हो, तो आपको अनुभव हर चीज का है। तो
0: बिल्कुल,
1: मोहम्मद रफी और लता की आवाज है,
0: इनका तोड़ नहीं है।
1: कोई तोड़ नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बहुत अनुभव किया फिल्मों का।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: वैसे
0: आप,
1: तो
0: हम भी
1: अपनी अपनी
0: सहमत
1: तो
0: हैं।
1: हुआ करती, देखो यहाँ इस बात
0: हाँ
1: के लिए सब अपनी अपनी जगह सबसे गायक हैं।
0: ये बात सही है, लेकिन ये आवाजें
1: हाँ अपनी अपनी,
0: एवरग्रीन
1: लेकिन
0: है।
1: जो मोहम्मद रफी, चाहे सिंगल गीत गाए चाहे युगल गीत गाए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ ठीक है जी मैडम जी,
0: ठीक है रमेश जी,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन इन कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने में।
1: धन्यवाद मैडम जी। नमस्कार, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: अशोक सिंह
0: हाँ, अशोक सिंह जी, अपनी पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम
1: आकाश
0: भी
1: भाई,
0: बढ़िया
1: परिवार
0: हैं,
1: गोपाल,
0: बहुत
1: और
0: अच्छे
1: सब?
0: हैं।
1: मौसम सुहावना है,
0: वाकई
1: सुंदरता
0: अभी फुहार बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली 4-5 दिन से चल रहा है पानी।
1: चल रहा है। अभी तो बंद है, बंद हो जाता है बार बार बीच बीच में। चल
0: लेकिन फिर भी
1: रहा है। आप
0: धूप नहीं निकली अभी।
1: भोपाल में तो काफी बरसात हुई है, इधर नहीं, जबलपुर में इतनी नहीं हुई।
0: अच्छा, भोपाल में तो बहुत बारिश हो रही है अभी,
1: जी,
0: तो
1: लगभग तो
0: फुहारे हैं
1: बरसात।
0: लेकिन फिर बीच बीच में तेज भी हो जाता है।
1: स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैडम जी।
0: हाँ जी,
1: गाना
0: आपको
1: सुनवा
0: भी बहुत
1: दीजिए
0: बहुत
1: जी,
0: शुभकामनाएं।
1: गाना सुनवा दीजिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उपकार नूरी।
0: अरे वाह, क्या बात है! ये गाना तो एवरग्रीन
1: जी
0: है ना? कुछ भी हो, 15 अगस्त तो 26 जनवरी पे ये गीत ना बजे तो बड़ा सूना सूना लगता है।
1: जी यह भारत का रहने वाला हूँ,
0: बिल्कुल
1: भारत की
0: बिल्कुल।
1: राज।
0: तो कल के प्रोग्राम में सुनिएगा अपनी पसंद का गीत, ठीक है अशोक
1: जी
0: जी?
1: जी जी जी
0: चलिए,
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जिला सिंह मध्य प्रदेश से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था।
0: जी राहुल ध्रुवे जी, कैसे हैं?
1: अच्छे हैं मैम, अभी तो सब
0: और परिवार में सब कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम। आपके आकाशवाणी
0: हम बढ़िया,
1: सभी
0: आकाशवाणी परिवार भी बढ़िया है, और आपसे बातचीत कर रहे हैं तो और भी बहुत बढ़िया लग रहा है।
1: बारिश हो रही है इस समय भोपाल में? नहीं,
0: हाँ बारिश बहुत हो रही है, अभी 3-4 दिन से तो धूप
1: मेरे
0: नहीं।
1: यहाँ तो पानी तो नहीं आ रहा है, सीवी में काफी परेशानी है, 15 दिन हो गए। हाँ
0: अच्छा,
1: बिल्कुल, पानी आ ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि बादल तो है अभी गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं।
0: यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है और कई जगह तो वाटर ब्लॉगिंग भी हुई कि है ना, पानी भर गया, ये सब हुआ, लेकिन ठीक
1: नहीं
0: है।
1: नहीं यहाँ बिल्कुल बादल बस आया है, लेकिन पानी गिर नहीं रहा है।
0: आज तो फुहारे हैं लेकिन कल थोड़े, पर ये भी हो रहा है कि कुछ एरिया में पानी गिर रहा है और कुछ एरिया में नहीं गिर रहा है, ये भी हुआ है।
1: हाँ
0: खैर मूसलाधार
1: हाँ
0: बारिश थी एक जगह लेकिन दूसरी जगह नहीं थी।
1: हाँ ऐसा ही चल रहा है।
0: ऐसा भी हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो राहुल जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे कल के प्रोग्राम में?
1: दिल की बाजी
0: दिल की बाजी।
1: मूवी का नाम,
0: अच्छा, और गीत के बोल?
1: आगरे से आई हो या बरेली से, पूछ लेंगे आपकी पहेली से।
0: ओहो, बड़ा स्पेशल सा गाना है ये तो।
1: हाँ, मिल जाएगा मैम।
0: मैं देख के बता रही हूँ, नहीं मिलेगा तो फिर आपको दूसरा गाना बताना पड़ेगा।
1: एक और बता देता हूँ आपको, ज्ञान की बाजी, ये तो अभी बताया मैंने,
0: जान की बाजी की दिल की बाजी बताया था आपने,
1: दिल की बाजी।
0: और अब जान की बाजी,
1: हाँ
0: मतलब
1: ज्ञान
0: कुछ
1: की
0: भी
1: बाजी,
0: करो
1: हम साथ
0: बाजी
1: में
0: तो
1: हैं,
0: है
1: हमें
0: ही।
1: साथ होने दे, अगर ना मिल पाया मैम तो
0: नहीं तो जान की बाजी है, बाजी चाहिए आपको आज।
1: कैसा।
0: बाजी तो होने ही होना है, चाहे दिल की बाजी हो चाहे जान की बाजी हो।
1: हाँ मैं दोनों बता दिया हूँ, दोनों में से आप देख लेना।
0: हाँ देख रही हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों ही नहीं है हमारे पास।
1: दोनों उपलब्ध नहीं है। हेलो,
0: एक सेकंड और देखते हैं, हम कंटिन्यूस
1: ओके अच्छा,
0: सर्च कर रहे हैं लेकिन नहीं दिख रहा है अभी, हो सकता है निकल आए, थोड़ा सा वेट करिए, नहीं तो फिर हम आपसे कहेंगे कि कुछ और बताइए,
1: ओके ओके।
0: है ना। बाजी निकल आया है लेकिन दिल की और जान की, ये बस नहीं, प्यार की बाजी निकल आया, ना जान की निकला ना दिल की निकला। अब तो कोई दूसरा
1: जान
0: गीत
1: की बाजी
0: बताइए।
1: दूसरा,
0: हाँ जी,
1: इसमें साजन का घर कर दीजिए।
0: ये मिल जाएगी आपको।
1: हाँ साजन का घर, और इसमें गाने के बोल रहेंगे, मैं
0: हाँ
1: करता हूँ तुझसे प्यार, पास मुझे आने दो।
0: अच्छा ठीक है, बिल्कुल।
1: दोस्तों के नाम ले लो जल्दी से।
0: हाँ हाँ ले लीजिए।
1: मध्य प्रदेश सागर से रहेंगे विपिन कटारे,
0: अच्छा
1: और
0: हाँ
1: शिमला से रहेंगे राकेश जी। ठीक है
0: बहुत
1: सर, इसी
0: बढ़िया
1: का
0: बहुत
1: था।
0: बढ़िया, ये तो कटारे जी भी तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद करता हूँ मैं इनको, मैं यहाँ से। ठीक
0: बिल्कुल, तो साजन के घर फिल्म का गीत आप कल सुन पाएंगे। ठीक है
1: ओके ओके,
0: ठीक है राहुल जी,
1: धन्यवाद।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। रानू जी बोल रही
1: कविता
0: हैं देवास से।
1: जी, बिल्कुल। और आप कविता मैम बात कर रही हैं?
0: जी हाँ।
1: हम तो। और आपके क्या हाल चाल है मैम?
0: हमारे हाल बढ़िया हैं। आप सुनाइए, आपके क्या हाल हैं?
1: हम भी ठीक है। और क्या, और आपसे बात हो गई तो एकदम मतलब मन प्रसन्न हो गया है।
0: बिल्कुल, हमारा भी। और देवास में बारिश के क्या हाल है ये तो बताओ।
1: हाँ, देवास में मतलब अब बिल्कुल हो रही है बारिश।
0: कंटिन्यू चल रही है 4-5 दिन से।
1: हाँ बिल्कुल, मतलब गुनाह से तो कम है लेकिन फिर
0: हाँ।
1: भी मतलब है, मतलब अच्छी है बारिश।
0: भोपाल जैसी
1: हाँ,
0: होगी।
1: और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन की भुजरियों की बहुत सारी एडवांस में शुभकामनाएं हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। और भुंजरियों के पहले तो अपनी एक बार और बातचीत होगी, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ।
1: नहीं, उम्मीद तो करते हैं लेकिन मैं
0: हाँ,
1: ना
0: कई बार
1: सुना
0: कॉल नहीं
1: चली
0: लग
1: जाऊंगी तो
0: पाता है।
1: शायद ही टाइम मिले,
0: अच्छा
1: इसलिए बोल
0: अच्छा
1: रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा चलो बढ़िया, हमने
1: हाँ
0: आपकी सारी बधाइयाँ एक्सेप्ट कर ली और आपको भी दे दी।
1: जी, थैंक यू।
0: बिल्कुल
1: वैसे मुझे टाइम मिलेगा तो एक बार और विश कर दूंगी, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: देखो अरविंद सोनी जी के बाद मैं ना अगर सबसे ज्यादा किसी को मानती हूँ तो आपको।
0: थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार देने के लिए।
1: जी, और ना मुझे गाना सुनना है आज, आपकी पसंद का ही सुना दीजिए मुझे गाना तो।
0: मेरी पसंद का, चलो
1: हाँ,
0: ठीक है, हम अपनी पसंद
1: हमारी
0: का
1: पसंद तो
0: सुनाएंगे।
1: हम सुनते रहते हैं
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: आपकी सॉन्ग ऑफ चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप
0: अरे
1: कभी
0: वाह,
1: कभी प्ले करती है ना सॉन्ग,
0: हाँ
1: तो मैं
0: हाँ
1: सुनती हूँ आपका प्रोग्राम।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर
1: और
0: मेरी पसंद का गीत सुनना,
1: ये
0: वो
1: सॉन्ग
0: डेडिकेट
1: अच्छा है
0: रहेगा
1: आप
0: आपको।
1: जी, और आपको भी रहेगा और नंदनी को रहेगा।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, अभी तुम्हारा नाम लिया रानू जी ने और तुम हाजिर हो गई।
1: हाँ, मैंने बहुत दिन से कॉल भी नहीं किया ना। हम
0: हाँ नंदिनी, और सुनाओ कैसी हो?
1: अच्छे हैं, और आप कैसी हैं मैम? बरसात
0: हम अच्छे हैं। और ये बताओ कि सागर में मौसम कैसा है?
1: हो रही है यहाँ पे, तो अभी भी बादल ही है और अभी लगता है आने वाली है। और मतलब रात में भी हुई थी, शाम को भी हो ही रही है, अभी तो बारिश ही है।
0: और
1: और
0: क्या
1: आप
0: करती
1: यहाँ?
0: हो इस मौसम में? तुम क्या करती हो?
1: मैं तो मुझे मतलब कुछ नहीं करती। मुझे ना अभी मन कर रहा था चीला खाने का, तो मैं तो बनाने जाती थी।
0: वाह, अकेले
1: आप
0: अकेले।
1: भी आ जाओ।
0: बिल्कुल, चलो ठीक है। और सुनाओ, कल कौन सा गीत सुनोगी तुम कल के प्रोग्राम
1: आज
0: में?
1: सॉन्ग आप अपनी पसंद का चला रहे हैं, कोई सा
0: अरे
1: भी।
0: भाई, रानू जी ने भी मुझे अपनी पसंद दी है और तुमने भी मुझे अपनी पसंद दे दी।
1: अब क्या है कि हम तो सॉन्ग सुनते रहते हैं,
0: हाँ
1: बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप भी सुना देना।
0: चलो ठीक है, ठीक है, मैं अपनी पसंद का गीत सुनाऊंगी। ठीक है,
1: और
0: कॉल।
1: डेडिकेट आपको करना चाहूंगी, जो भी आप
0: ओहो,
1: चलाएंगी, और मेरी सिस्टर रानू दीदी को। जी
0: चलो ओके, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: ठीक।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी।
1: शिवानी मेहरा बात कर रही, नीमच से।
0: शिवानी मेहरा जी,
1: जी
0: अपनी पहले भी बात हो चुकी है ना?
1: जी मैम, मेरी बात हो चुकी है। आज मैं अब 4 महीने पहले मैंने कॉल लगाया था, अब ट्राई कर रहे हो, अब लगाया मेरा।
0: चलो अच्छा है, लेकिन आज कॉल लगा तो।
1: जी मैम,
0: और कैसी है शिवानी जी?
1: अच्छी मैम, आप कैसे हो
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और कौन से गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम? मूवी का नाम है जान दुश्मन और गाने के बोले चलो रे डोली उठाओ कहाँ।
0: अरे वाह, क्या प्यारा गाना चूज किया है आपने तो। अच्छा,
1: जी मैम, हमारी शादी है इसलिए
0: शादी कब है?
1: देव उठनी पे। जी
0: अच्छा, देव उठनी पे।
1: मैम,
0: चलो बढ़िया, सारी तैयारी वैयारी हो गई।
1: जी मैम चल रही है।
0: पर ये गीत सुन के रोने मत लगना।
1: जी मैम, नहीं होएंगे। हमारी सिस्टर को, हमने सिस्टर से पूछा, मैंने कि मैं फोन ट्राई कर रही थी, तो
0: हाँ।
1: मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरे के कौन सा गाना सुन जल्दी बता, तो उसने मुझे बताया कि आला सुन लो। मैंने ठीक है सर।
0: चलो ठीक है, थोड़ा इमोशनल सॉन्ग है,
1: जी
0: बहुत
1: मैम,
0: मतलब हार्ट टचिंग है ना?
1: जी मैम,
0: चलो ठीक है, तो शिवानी जी अभी से आपकी शादी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: थैंक यू मैम।
0: ठीक है? और वैसे हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो अपनी बात होगी, अभी देव उठनी
1: हाँ
0: 11 पे
1: मैम,
0: बहुत
1: हो गया है
0: टाइम
1: लगा
0: है।
1: के, ट्राई तो करती हूँ, पर क्या
0: हाँ
1: लग नहीं पाता है। काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, अभी भी बहुत देर से ट्राई कर रही थी, अब लगा है मेरा फोन।
0: चलो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी एक बार और अपनी बात होगी
1: जी मैम,
0: और फिर बाद में भी होती रहेगी, ठीक है?
1: जी मैम, होती रहेगी ना बात तो।
0: चलो शिवानी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
1: आप अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम कविता रावत है।
1: कविता रावत,
0: अब आप अपना नाम बताइए। कहाँ
1: विजय पांडे,
0: से?
1: बलरामपुर से। कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में।
0: अरे
1: इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, तब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। काबिले अदब मोहतरमा कविता रावत साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा आदाब, नमस्कार।
0: जी नमस्ते। बहुत खूबसूरत शायरी आपकी, और ऐसा लग रहा है कि सन 1947 के पहले की ऊपर आपने ये बोला है।
1: जी, ये चंद लाइनें हैं अमर शहीद अशफाक उल्ला खां के,
0: जी जी जी
1: जिन्होंने अपने वतन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिए।
0: आक्रमण फिल्म का गीत हमारे पास है या नहीं, ये हम थोड़ा सा, हाँ है,
1: कुछ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कोई भी आप सुना
0: बिल्कुल,
1: दीजिए।
0: ये गीत मिल गया है और यही गीत सुनेंगे आप। चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन में जान गंवाने वाले सभी लोगों और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित प्रदर्शनी आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। वे कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लोगों की शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। और भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में 17 अगस्त को परमाणु ऊर्जा और उसके उपयोग पर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे के खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म रोजा से। आवाज है हरिहरन की।

ए आर रहमान का संगीत, पीके मिश्रा का लिखे बोल, हरिहरन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रोज़ा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आनंद राज आनंद की आवाज़ में, फिल्म परदेसी बाबू से।

आनंदराज आनंद का संगीत उन्हीं के लिखे बोल और उन्हीं की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परदेसी बाबू से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अनु मलिक की आवाज़ में फिल्म जुड़वा से।

0: वाह हाय शर्मीली वाह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा
1: यो
0: ईस्ट और वेस्ट
1: यो
0: इंडिया इज द बेस्ट
1: यो
0: ईस्ट और वेस्ट
1: यो
0: इंडिया इज द

0: वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भारतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा,
1: हमारा
0: ईस्ट और वेस्ट India is the best.
1: Yo.
0: East or West.
1: Yo.
0: India is the best.
1: Yo.

0: मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me।
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us।
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्य राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशन हमारा,
1: हमारा
0: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
2: कम ऑन लेट मी हियर यू से
1: आई एम बी आई ए,
2: कम ऑन एवरीबॉडी से

अनु मलिक का संगीत, उन्हीं की आवाज़, उन्हीं के लिखे बोल साथ थे नितिन रायकवार। फिल्म जुड़वा से आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म परदेश से। आवाज़ है हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और शंकर महादेवन की।

नदीम श्रवण का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, हरिहरन कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण और शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म परदेश से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय
1: के जोश उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। चलो दीदी झूला झूलते हैं।
4: हाँ हाँ क्यों नहीं,
5: अंगवा की डार पे जी।
4: और झूलते झूलते सुनते हैं
2: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
0: क्या
1: ये धरती ये नदिया ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
0: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
0: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
0: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
0: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की चौथी कड़ी।

दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार को स्वीकृति ना देना कंपनी के उन तौर तरीकों में से एक था जिनके द्वारा अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुट गए थे। एक समझी बूझी कुटिल योजना उनके पास थी और वो परिस्थितियों के अनुसार उसे क्रियान्वित कर रहे थे। सतारा के राजा अप्पा साहेब जब निसंतान मरे तो उनके राज्य को हड़प लिया गया। इसी तरह 8 देसी राज्यों को साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। पेशवाई और अवध की नवाबी भी इस मनमानी की चपेट में आ गई।

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में फिरंगी शासन तंत्र ने देश के आर्थिक ढांचे में बुनियादी छेड़छाड़ की शुरुआत की। अंग्रेजों ने जमींदारी और रैयतवारी प्रथाएं शुरू की, जिससे किसानों का स्वामित्व छिन गया। अब जमींदार भूस्वामी था और ये वर्ग अंग्रेजों का समर्थक बन गया। रैयतवारी में किसानों पर लगान लगाया गया, ये बहुत ज्यादा था और इसे चुकाने में असमर्थ भूस्वामी सूदखोरों के चंगुल में फंसते गए।

जिन सामंतों को फिरंगी समझौतों के द्वारा अपना सहायक बनाते थे, उन्हें अपने यहां अंग्रेजी फौज रखनी पड़ती थी। बाहरी आक्रमण से रक्षा और चोरी डकैती बलवा जैसी वारदातों से शांति बनाए रखने के लिए रखी गई इस सेना का खर्च देशी सामंत को उठाना होता था। यह खर्च भारी होता था और जब धीरे धीरे सामंत इसे चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो इस कर्ज की एवज में उसकी अलमदारी जब्त करके ब्रिटिश राज में मिला ली जाती थी।

एक दुष्चक्र, षड्यंत्रों का एक लगातार घूमता हुआ घातक और विनाशक पहिया, जो भारत के स्वाभिमान और भारत की स्वतंत्रता को रौंदता कुचलता हुआ लगातार घूम रहा था। भारत की आजादी गुम होती जा रही थी और भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हो रहा था। सामूहिक प्रतिरोध दूर दूर तक नहीं थे, जनता विभाजित बटी हुई थी।

किसानों के पास नहीं रही अपनी जमीन, मालिक बन बैठा जमींदार। बल्कि जमींदार भी कहां था मालिक, असल मालिक थी कंपनी की सरकार।

0: रोटी रोटी से वंचित खेतिहर देश के बहुमत निवासियों के सामने रोजगार का एक रास्ता खुला था, कंपनी की फौज में भर्ती का। वे सिपाही बनने लगे। अपने इलाकों से विस्थापित होकर वे कंपनी के वेतनभोगी सिपाही बने और कंपनी की लड़ाइयों में अपने ही देशवासियों के सीने पर उनकी गोलियां बरसने लगीं।
1: कंपनी ने देश के उद्योग धंधों को भी अपना निशाना बनाया। लोगों के हाथों का हुनर नहीं रहा, क्योंकि बाजार में मशीन से बने माल का सैलाब आ गया था। ढाका के मलमल की जगह मिल के तैयार लट्ठे ने ले ली थी। घरेलू उद्योग धंधे बंद होने लगे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, फिरंगी मिल्कियत वाली मिलें उग रही थीं।
2: हाथों का काम छिन रहा था, किसान के कांधे का हल और मजूर की छेनी हथौड़ी उससे छीन ली गई थी। वो बेकार थे, बेरोजगार थे, उनके पेट में जलती हुई भूख थी और आंखों में डूबता हुआ विश्वास।

ये था 19वीं सदी का हिंदुस्तान, अभूतपूर्व हिंदुस्तान, जिसे फिरंगियों ने सात समंदर पार से आकर गढ़ा था।

0: एक कसमसाहट कांप रही थी महादेश की धमनियों में। अन्याय के प्रतिकार के लिए, अत्याचारी के संहार के लिए कण कण में आक्रोश का सैलाब रूप और आकार लेता हुआ चिंगारी बन रहा था, जो कालांतर में प्रलयंकारी दावानल की सर्वग्रासी व्यापकता होने जा रहा था। मातृभूमि की माटी ललकार रही थी, कुंठित पौरुष को विद्रोह के लिए पुकार रही थी।
1: अभी अव्यक्त होने का अनुकूल अवसर नहीं था, अंगड़ाई का वक्त नहीं आया था, अभी तो सिर्फ तैयारी थी और जनता इसमें जुट गई थी। आम जन जिनके पास नहीं था राजपाट और न जिनके थे अपने स्वार्थ, जिनके पास अपना खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए था स्वाभिमान और स्वदेश। महादेश की माटी में यह संकल्पित सपना सुगबुगा रहा था। एक ऐसी बयार थी जो चल पड़ी थी, तिनका तिनका, गाछ पखेरू और पत्ता पत्ता जिसके स्पर्शों से आश्वस्त हो रहा था, रोमांचित हो रहा था। बच्चा बच्चा निर्णायक मुठभेड़ के लिए तैयार हो रहा था।

0: स्वाधीनता के संग्राम का संदेश, बलिदानों का वाहन, सर्वस्व न्योछावर कर देने का संकल्प, अपनी नियति को बदलने और नया इतिहास रचने का संकल्प, ये सब समाहित था सर्वत्र सुलभ और जाने पहचाने प्रतीक रोटी और कमल में। रोटी जीवन की मूलभूत आवश्यकता और कमल उसे सुंदर से सुंदरतम बनाने की आकांक्षा। जन जन का विश्वास इन प्रतीकों से आत्मसात होकर जुड़ गया।
1: आजादी के इन प्रतीकों की यात्रा और इनके माध्यम से स्वाधीनता का ये स्वतः स्फूर्त संकल्प चल पड़ा।
2: एक दूसरे तक अनुप्राणित करने, एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक,
1: गांव चौपालें, हाट बाजार, झोपड़े और घर, सिपाहियों की बैरकें और मजदूरों के कारखाने, बिजली की तेजी और तन्मयता के साथ पहुंच रही थी संघर्ष की ये पुकार।

0: संदेशा लेकर चले जा रहे थे सतत और निरंतर आजादी के हर कार्य। सब कुछ गोपनीय था। यायावर मुसाफिर, पथिक, सन्यासी, साधु और फकीर शत्रु से अपनी पहचान छुपाए, सर्वग्रासी दामानल की आग दबाए।
1: उनके लक्ष्य पर विशेष रूप से फिरंगी फौज की छावनियां थीं। सशस्त्र संघर्ष में प्रशिक्षित सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली थी। हिंदुस्तानी सिपाही दासता के वातावरण से पहले ही उबे हुए और अपमानित थे।
2: इस हलचल से बेखबर और अनजान नहीं थी झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेलियों के नेतृत्व में जो स्त्री सेना तैयार की थी, उसका रियाज और मशक्कत जारी था। अंग्रेज इसे उपहास की नजर से देखते थे, नहीं जानते थे कि एक तूफान शक्ल ले रहा है, एक लहर है जो उठ रही है। रानी के पास नाना के संदेशवाहक आते जाते रहते थे, विशेष रूप से तात्या टोपे। सामरिक तैयारी के रूप में गोला बारूद ढाला जा रहा था, तोपों की मरम्मत करके उन्हें ठीक ठाक किया जा रहा था, पूरी तैयारियां चल रही थी।
1: और राजा गंगाधर राव की रंगशाला की नर्तकियां नाचती गाती अंग्रेज छावनियों में घूम रही थीं, खुफिया समाचार और सूचनाएं इकट्ठा करती हुई और आजादी के महासंग्राम का संदेशा पहुंचाती हुई।

0: राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहते थे। उनकी चिंता थी झांसी को गद्दी का उत्तराधिकारी मिलेगा कब। रानी इन दिनों गर्भवती थी और राजा की आस वहां अटकी हुई थी। झांसी की जनता को भी अपने राजकुमार की प्रतीक्षा थी।
1: किंतु राजा गंगाधर राव और झांसी की जनता दोनों ही इस कड़वे सच को भी जानते थे कि अंग्रेजों की लोलुप गिद्ध निगाह से झांसी को बचाकर रख पाना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों का काला साया अपने मनहूस पांव पसारता हुआ बड़ा चला आ रहा था। देश के दूसरे भागों से इसकी सूचनाएं मिल रही

0: थीं। झांसी में राजमहल से द्रोह रखने वाले तत्वों को अंग्रेज प्रश्रय और संरक्षण दे रहे थे। झांसी में फिरंगी सेना अफसर की ताक में थी।
1: खबरें आ रही थीं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। अतः राजा गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध संबंधी तैयारियों को उचित मानते थे और उनका मौन समर्थन करते थे। प्रगटतः वो अंग्रेजों के मित्र थे, लेकिन वो अच्छी तरह समझते थे कि उनके इन मित्रों का विश्वासघात देश के तमाम रजवाड़े भुगत चुके हैं।
0: अपनी माटी की पवित्रता और आजादी के स्वाभिमान की रक्षा तलवार की धार से करने के अभ्यस्त वीर बुंदेलों के सामने परीक्षा की एक और घड़ी रूबरू होने वाली थी। बुंदेलखंड इसके लिए तैयार हो रहा था।
1: विप्लव की आग में तपने के लिए प्रस्तुत थे बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ नरेश बख्त बली, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई और गढ़मंडला के गौड़ राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह। आजादी के अनुष्ठान में अपनी आहुति देने के लिए जमुना से नर्मदा तक और टौंस से चंबल तक फैला हुआ बुंदेला अंचल तत्पर था। प्रतीक्षा थी केवल रणभेरी के बजने।

झांसी में घटनाएं घटित हो रही थीं। रानी ने झांसी के उत्तराधिकारी को यथासमय जन्म दिया, किंतु भाग्य की सहमति इस संभावना के साथ नहीं थी। कुछ महीनों के बाद राज्य का ये राजकुमार अल्प वय में ही काल कवलित हो गया। रोता छोड़ गया रानी को, झांसी को।

0: पहले से ही राजा गंगाधर राव अस्वस्थ चल रहे थे। एक और आघात लगा। राजा ने अपने परिवार के एक बालक आनंद राव को दत्तक रीति से अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया। उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय परंपरा के अनुसार आनंद राव के गद्दी पर बैठने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इस अधिकार की पुष्टि कंपनी सरकार से होनी थी। कंपनी पेशवा बाजीराव को निराश कर चुकी थी। उसने पेशवाई के लिए अधिकार मंजूर नहीं किया था और पेशवा की जागीर और पेंशन जब्त कर ली थी।
1: आनंद राव को दत्तक पुत्र के रूप में नया नाम दिया गया दामोदर राव और उसके उत्तराधिकार की पुष्टि के लिए राजा गंगाधर राव ने अर्जी कंपनी सरकार को भेज दी। इसे झांसी में मौजूद अंग्रेजों के आला अफसर एलिस ने बड़े लाट डलहौजी को पहुंचा दी। अर्जी पर लाट साहब के हुक्म का इंतजार कर रही थी झांसी।
0: झांसी के नवजात राजकुमार के असमय अवसान के बाद एक वज्रपात और हुआ। दुनिया की रंगशाला छोड़ राजा गंगाधर राव चल बसे। अवयस्क दामोदर और वैधव्य भोगती रानी झांसी की राजगद्दी अब रीति थी। झांसी करुणा के समुद्र में डूब गई। एक अनिश्चय प्रस्तुत था। एक सवाल खड़ा था कि

0: लॉर्ड डलहौजी ने 27 फरवरी सन 1854 को झांसी के कागजातों पर अपना हुक्म चढ़ाया। एलिस उस फरमान को लेकर झांसी के दरबार में आया।
1: झांसी के राज दरबार में कंपनी बहादुर एलिस साहब का स्वागत है। यहां पधारने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: वेल सरदार साहब, हम सिपाही हैं और कर्तव्य पालन करने में हमें कष्टों की परवाह नहीं होती। फिर चाहे कर्तव्य कैसा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो। बाय द वे, महारानी साहिबा आ गई क्या?
1: जी एल साहब, पर्दे के पीछे विराजमान है।
2: ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राजा गंगाधर राव की दत्तक उत्तराधिकार की अर्जी नामंजूर की है। पेशवा का आश्रित झांसी का राज्य ब्रिटिश इलाके में मिलाया जाता है। हर खास आवाम को ताकीद की जाती है कि झांसी की सरकार अब से मेजर एलिस के अधीन होगा। इलाके का आवाम अब अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन की प्रजा माने और अंग्रेज कारिंदों को महसूल और करों की अदायगी करते हुए सुख और चैन के साथ रहे। लॉर्ड साहब ने कृपा करते हुए रानी साहिबा और उनके कुटुंब के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन मंजूर की है।
1: ओफो, अनहोनी, ये तो अनहोनी है।
2: वेल रानी साहिबा, फकत इतना है फरमान, अब मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।
3: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की चौथी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को दिल्ली के लाल किले में होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित प्रदर्शनी आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। आज समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। प्रदेश में आज जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होने की संभावना है और भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में 17 अगस्त को परमाणु ऊर्जा और उसके उपयोग पर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। दिन का 1 बजा है। महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम महिला सभा।

अभिवादन के साथ वंदे मातरम। आज़ादी का जश्न मनाने तैयार हैं हम सब, हर घर तिरंगा फहराने तैयार हैं हम सब। आज़ादी की शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं उस देश की बेटी हूँ, नागरिक हूँ, जहाँ तिरंगा तीन रंगों में अपने संघर्ष की कहानी बयां करता है। सखियों, कि आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, कड़े संघर्षों के बाद मिली है। उन्होंने अपने ही देश में खाए हैं कोड़े, कई बार तोड़े गए और गए हैं।

ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा है हमारे हिंदुस्तान में, भले ही भोजन का स्वाद अलग हो, है ना, वस्त्र वही है पर पहनने का अंदाज अलग हो, जुबान अलग अलग हो सकती है पर भावनाएं एक जैसी हों, तो सिर्फ ये हमारे हिंदुस्तान में ही संभव है सखियो। सही कहा ना मैंने? मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ। जी हाँ, मैं संयोगिता जोशी हूँ और आज महिला सभा कार्यक्रम आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ प्यारी सखियो। तो स्वतंत्रता के जश्न की तैयारी में जो हम लगे हुए हैं, देश की बहुरंगी छटा को व्यक्त करता एक बहुत प्यारा सा गीत आपको सुनवा रही हूँ आज कार्यक्रम में। सबसे पहले जिगरी दोस्त फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आइए हम सब मिलकर जश्न की तैयारी में जुट जाएं।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

0: जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: दोबारा से हम अपने कार्यक्रम में है सखियो। स्वतंत्रता की आज़ादी और आज़ादी की स्वतंत्रता, दोनों ये शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, पर जज्बा अपने अपने ढंग से और अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त करने का हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई मंचन से कहानी सुनाता है स्वतंत्रता की, कोई स्वर लहरी में पिरो कर गाता है, तो कोई नृत्य मुद्राओं से स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है सखियो, और कोई शब्दों में पिरो कर आज़ादी का रस खोलता है। हमारी कार्यक्रम में आजादी का रस घोल रही हैं अपनी कविताओं के माध्यम से डॉक्टर विमी मनोज। आइए देशभक्ति के रंग में रंग जाएं विमी मनोज की कविताओं के संग हम सभी।
2: आकाशवाणी इंदौर के श्रोताओं को मैं डॉक्टर विमी मनोज, चित्रकार और कवित्री, नमस्कार करती हूँ। सखियों, सच ही कहा है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम अक्सर पूछते हैं कि देश ने हमें क्या दिया या हमारे लिए क्या किया, परंतु सोचा है हमने देश के लिए क्या किया? हमारे पूर्वजों का अमूल्य योगदान रहा है, कुछ कर्तव्य हम देशवासियों के भी हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में इसी संदेश को मैंने अपनी स्वरचित कविताओं में पिरोया है, आशा है आपको पसंद आएंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है अनुबंध। ज्ञान वेद का संजोकर अमृत जग को दिया जीवन पाठ, ज्ञान वेद का संजोकर अमृत जग को दिया जीवन पाठ, शून्य विज्ञान की कर खोज, शून्य विज्ञान की कर खोज, मानव को दिए नव प्रबोध, मानव को दिए नव प्रबोध, योग तपस्या संयम से दिए स्वास्थ्य सुख मंत्र, योग तपस्या संयम से दिए स्वास्थ्य सुख मंत्र, सत्य ज्योति का जलाकर दीप, सत्य ज्योति का जलाकर दीप, दिए धरा पर वो आशा बीज, दिए धरा पर वो आशा बीज, हरित धरा का किया श्रृंगार अडिग शिखरों पर फहराए ध्वज, हरित धरा का किया श्रृंगार अडिग शिखरों पर फहराए ध्वज, जीवनदायिनी पावन नदियों को, जीवनदायिनी पावन नदियों को, घाट घाट श्रद्धा से अपनाएं, घाट घाट श्रद्धा से अपनाएं, चट्टानों के दुर्गम पथ पर साहस के जलाए दीप, चट्टानों के दुर्गम पथ पर साहस के जलाए दीप, श्रम संकल्प और पुरुषार्थ से, श्रम संकल्प और पुरुषार्थ से सदा रचाए नव इतिहास, सदा रचाए नव इतिहास, प्रेम अहिंसा और करुणा का विश्व को अनुपम दिए संदेश, प्रेम अहिंसा और करुणा का विश्व को दिए अनुपम संदेश, वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र से, वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र से सजाए मानवता का परिवेश, सजाए मानवता का परिवेश, अंतरिक्ष के अनंत गगन में लगाए चंद्र माथे मंगल तिलक, अंतरिक्ष के अनंत गगन में लगाए चंद्र माथे मंगल तिलक, स्वर्णिम युग के गौरव को, स्वर्णिम युग के गौरव को फिर से विश्व पटल पर लहराए, फिर से विश्व पटल पर लहराए, भारत मेरे हृदय का स्पंदन, माटी मेरी रहे पहचान, भारत मेरे हृदय का स्पंदन, माटी मेरी रहे पहचान, जन्मभूमि को शत शत वंदन, जन्मभूमि को शत शत वंदन, शीर्ष उसका रहे सम्मान, शीर्ष उसका रहे सम्मान, गौरवशाली ऐसे भारत हित कर्तव्य पथ पर बढ़ती जाऊं, गौरवशाली ऐसे भारत हित कर्तव्य पथ पर बढ़ती जाऊं, जलाकर राष्ट्र प्रेम के दीप, जलाकर राष्ट्र प्रेम के दीप स्वयं से यह अनुबंध निभाऊं, स्वयं से यह अनुबंध निभाऊं। मेरी अगली कविता में मैंने अपने देशवासियों के लिए एक आह्वान किया है, जागो ज्योति जलाओ, दूर करो अज्ञान का तम, सुनाओ समरसता का मंत्र, दूर करो अज्ञान का तम, सुनाओ समरसता का मंत्र, बनकर अमिट आशा की किरण, बनकर अमिट आशा की किरण, मिटा अंधकार को, जागो ज्योति जलाओ, भुलाकर भेदभाव सद्भाव का फैलाओ संदेश, भुलाकर भेदभाव सद्भाव का फैलाओ संदेश, धर्म जाति से उठकर ऊपर, धर्म जाति से उठकर ऊपर, महकाओ प्रेम की बगिया, जागो ज्योति जलाओ, बोध कर अद्वैत का, अपनाओ परोपकार और करुणा, बोध कर अद्वैत का, अपनाओ परोपकार और करुणा, हर जीव में देख प्रभु, हर जीव में देख प्रभु, बढ़ाओ सहिष्णुता अपार, जागो ज्योति जलाओ, निभाकर राष्ट्र धर्म श्रम सेवा और समर्पण से, निभाकर राष्ट्र धर्म श्रम सेवा और समर्पण से, नवयुग का लाओ प्रभात, नवयुग का लाओ प्रभात, जगाओ नव चेतना, जागो ज्योति जलाओ, निर्माण में भारत के अपना दो योगदान, निर्माण में भारत के अपना दो योगदान, जीवन कर समर्पित, जीवन कर समर्पित, मातृभूमि के गौरव हेतु, जागो ज्योति जलाओ, शक्ति ज्ञान और कर्म के बल नवयुग का करो निर्माण, शक्ति ज्ञान और कर्म के बल नवयुग का करो निर्माण, विश्वगुरु भारत का स्वप्न, विश्वगुरु भारत का स्वप्न, साकार करो अपने कार्य से, जागो ज्योति जलाओ, जागो ज्योति जलाओ। मेरी अगली कविता भारतीय लोकतंत्र पर आधारित है, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र। ना राजे ना रजवाड़े, जन के हाथों में हो बागडोर, ना राजे ना रजवाड़े, जन के हाथों में हो बागडोर, तंत्र तभी सशक्त बने जब जागृत हो जन जन का शोर, जब जागृत हो जन जन का शोर, सत्ता का अलंकरण नहीं सेवा ही जिसका धर्म, सत्ता का अलंकरण नहीं सेवा ही जिसका धर्म, न्याय समता स्वाभिमान से संचालित हो जनजीवन का क्रम, संचालित हो जनजीवन का क्रम, अधिकारों के साथ कर्तव्य जागे सुदृढ़ हो जन विश्वास, अधिकारों के साथ कर्तव्य जागे सुदृढ़ हो जन विश्वास, जनमत ही सर्वोच्च शक्ति बने यही संविधान का प्रकाश, यही संविधान का प्रकाश, मतभेदों में भी समन्वय खिले संवाद का रहे सम्मान, मतभेदों में भी समन्वय खिले संवाद का रहे सम्मान, जनहित सर्वोपरि रहे सदा यही राष्ट्र की पहचान, यही राष्ट्र की पहचान, लोक इच्छा लोक शासन यही हो सच्चा मंत्र, जन जन की सहभागिता से सुदृढ़ बने हमारा भारतीय लोकतंत्र, सुदृढ़ बने हमारा भारतीय लोकतंत्र। मेरी अगली कविता आज के संदर्भ में है, आज के नागरिक और खासकर नव युवक युवतियों से एक अनुरोध, शीर्षक है प्रयास हो, प्रयास हो, आओ गर्व करें, आओ गर्व करें, नारे लगाएं या मौन सहमति पृथक रास्ते अपनाएं, नारे लगाएं या मौन सहमति पृथक रास्ते अपनाएं, करें न्योछावर सर्वस्व राज्य के गण देशांतर के जन, करें न्योछावर सर्वस्व राज्य के गण देशांतर के जन, मतभेदों के माया जाल में पनपे ना मन भेद, मतभेदों के माया जाल में पनपे ना मन भेद, सजाएं विविध रंगों से आंगन एकत्व महकाएं, सजाएं विविध रंगों से आंगन एकत्व महकाएं। मानचित्र सीमाओं में सही परंतु हृदयों में नहीं। मानचित्र सीमाओं में सही परंतु हृदयों में नहीं। भाषाएं भिन्न हो चाहे स्वप्न सभी के रहे एक। भाषाएं भिन्न हो चाहे स्वप्न सभी के रहे एक। निजी स्वार्थ से ऊपर जले कर्तव्य का दीप। निजी स्वार्थ से ऊपर जले कर्तव्य का दीप। सत्य करुणा और श्रम से हर भारतीय रहे सफल। सत्य करुणा और श्रम से हर भारतीय रहे सफल। प्रयास हो बढ़े मानवता का मान। प्रयास हो खुले प्रेम का हर द्वार। प्रयास हो हर कदम भारत के नाम रहे और भारत से हमराह। भारत से हमराह समस्त विश्व कल्याण बने। समस्त विश्व कल्याण बने। जय हिंद।
1: डॉक्टर विमी मनोज की देशभक्ति की कविताओं के बाद सखियों हम यही कहेंगे कि निज भावनाओं से परे सभी के हित का ख्याल रखना, सिर्फ अपना ही नहीं देश के हित का ख्याल रखना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। फहराएं हर घर तिरंगा और सुनते रहिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में प्यारे प्यारे देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत भी।

रंग दे इस चोले को, रंगे रचे बसे हम, स्वतंत्रता की तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सखियों, बताते हैं आपको प्रतिभा किरण योजना के बारे में। जी हाँ, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जो शहरी छात्राएं हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। जिन छात्राओं के 12वीं कक्षा में 60% अंक होते हैं वे छात्राएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। मेधावी छात्राओं को 5,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। 2008 से शुरू की गई ये योजना स्नातक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है छात्राओं के लिए। शहरी और गरीबी रेखा के नीचे वाली जो छात्राएँ हैं, जो अध्ययनरत हैं, 12th जैसा मैंने कहा कि कक्षा में 60% अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं और स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो वो छात्राएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। 10 महीनों तक सीधे बैंक में इनके 5,000 रुपये प्रतिवर्ष डाले जाते हैं। MP स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन छात्राएं कर सकती हैं। तो छात्राएं उठाइए लाभ इस योजना का और आगे बढ़ती रहें, फहराते रहें अपने घर में प्यारा सा तिरंगा जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। स्वतंत्र भारत में नारी की कहानी की अगर हम बात करें ना सखियों, तो समय के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। डिजिटल युग में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं और ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनी हुई हैं, साथ ही कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं। मी टाइम में आज हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं को किस तरह से स्थापित कर सकती हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर कार्यरत हैं जहाँ आपको अपनी तरक्की के लिए टफ स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़े, तो बहुत सूझबूझ से और पूरे मनोबल से वो डिसीजन आप लें। आप जानती हैं ना, दरभंगा की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने वायुसेना फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर देश की टॉप गन बनने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है सखियो। तो आप भी ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं अच्छे डिसीजन लेके। ये था आज का मी टाइम और अब सुनिए एक और प्यारा सा गीत।

जी हाँ, लहरा के झूमता रहे हमारा तिरंगा जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सखियों, भारत सरकार परिवहन सेवा और परिवहन ऐप के जरिए अपनी गाड़ी के कागजात बीमा आरसी PCU डिजिटल ऐप पर आप दिखा सकते हैं। यातायात पुलिस द्वारा डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह से मान्य किए जाते हैं। तो ये है हमारे स्वतंत्र भारत की तस्वीर, जो आधुनिक तकनीक के साथ साथ सामाजिक राष्ट्रीय तरक्की कुछ इस तरह से भी संभव हो रही है। हम डिजिटल एक दूसरे से जुड़े सखियों पर मुलाकात और वार्तालाप भी करते रहें बहुत ज़रूरी है। तरक्की की राह पर हम चलते रहें, एक दूसरे का हाथ थामे हम आगे बढ़ते रहें। स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। और अब मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर। आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए चुन्नी लाल रैकवार के स्वर में ये देशभक्ति गीत।
1: अरे धन्य है।

राम कुमार प्रजापति और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना देशभक्ति गीत। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए उर्मिला पांडे के स्वर में ये देशभक्ति गीत।

उर्मिला पांडे के गाए इस देशभक्ति गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अबोध कुमार सोनी के गाए गीत और भजन। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए अबोध कुमार सोनी के स्वर में ये भजन।

अभी आपने सुना अबोध कुमार सोनी के स्वर में गीत। लीजिए अब सुनिए अबोध कुमार सोनी के स्वर में ये भजन।

0: अबोध कुमार सोनी के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
5: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
7: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। भुज, इस फिल्म का गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत मनोज मुंतशिर का है और संगीत है आर को का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए फिल्म केसरी का गीत। आवाज़ बी पराग की है, गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है आर को ने।

बी पराग के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म केसरी का गीत। गीत लिखा था मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीतबद्ध किया था आर को ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से समारोह की अगुवाई करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MiG-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज तिरंगे के रंग में सरंगी सड़कों पर देशभक्ति का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव गोयल।
1: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई सौ जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी समेत कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: वहीं शिवपुरी और आगरमालवा सहित प्रदेश भर में विशाल तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी में संघर्ष में प्रवासी भारतीयों के योगदान, बलिदान और यशोगाथा को समर्पित प्रवासी सेनानी वीथी का लोकार्पण और अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के अमर शहीदों और वीर सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि मानवता को ऐसी त्रासदी का दंश फिर कभी न झेलना पड़े।
2: 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका का ये दिन, जब हमारे अपने देश के अंदर 60,00,000 से ज्यादा शरणार्थी अपना सब कुछ छोड़कर के यहाँ आए, 1.5 से 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी यहाँ से निकल करके पाकिस्तान पहुंचे, हमने सबने वो कष्ट देखा समझा। बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी जो दर्द थे, पीड़ा थी, उनके अपने जो उनके साथ हुए व्यवहार, वो इतने अत्यंत दर्दनाक है कि आज भी रोंगटे खड़े होते। हम सब परमात्मा से कामना करें जीवन में कभी ये दोबारा ना आए और जो बीता कष्ट है उस कष्ट को सदैव स्मरण रखें।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी आज पंजाब और हरियाणा के दौरे पर हैं। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का शुभारंभ उन्होंने किया। इसके बाद दोनों मंत्री अजीजपुर गांव में किसानों से संवाद करेंगे। शाम 4:30 बजे शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के कैथल जिले के धांड स्थित

एफसीआई साइलो का निरीक्षण भी करेंगे। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है, जिसमें 40 सवाल हैं। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल रखे गए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं शहडोल, कटनी, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में अगले 24 घंटे में 4 इंच या उससे अधिक बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत और लोक उपयोगी अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम में एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में 12 अक्टूबर तक सघन जागरूकता अभियान 3.0 चलाया जाएगा। छतरपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान वर्ष 2026 के तहत छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीना और एसपी रजत सकलेचा प्रशासनिक अमले के साथ बक्सवाहा के भ्रमण पर रवाना हुए और जबलपुर में लगातार बारिश के कारण बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर परियोजना प्रशासन ने जलस्तर नियंत्रित करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही

0: के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
5: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की CID से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में JPSC के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
6: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपल कोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि

0: पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म बॉर्डर का गीत। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत है अनु मलिक का।

शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर और कुणाल गांजावाला के स्वरों में लीजिए सुनिए फिल्म लक्ष्य का गीत। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सैम बहादुर, ये है इस फिल्म का गीत शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्य कुमार की आवाज़ों में। बोल गुलजार के हैं, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म कर्मा से। आवाज़ें कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और साथियों की है। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्र के नाम संदेश आप सुनेंगे शाम 7:00 से। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 8:00 सुनिएगा सुर्खियों में।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे मुशायरा, जो यौम आज़ादी पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम होगा। शायर होंगे आरिफ अली आरिफ, मोहम्मद साजिद अंसारी, ओरिना अब्बासी, सरवर हबीब और संचालन करेंगे फरमानुल्ला खां। रात 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग केदार। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02:28 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा युवा प्रोग्राम युवाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
1: और मैं हूं श्रद्धा।
0: दोस्तों, आजादी की पूर्व संध्या पर हम आप सभी देशवासियों का आकाशवाणी इंदौर परिवार की ओर से ढेर सारा प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, क्योंकि दोस्तों अब आज़ादी का त्यौहार जो है धीरे धीरे बिल्कुल हमारे दहलीज पर आ गया है। कल हम 79वां स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, यानी 79वां वर्ष कंप्लीट हो जाएगा और 80वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम प्रवेश कर लेंगे। क्या कहोगी इस बारे में तुम श्रद्धा?
1: बिल्कुल, देखते देखते कितना समय बीत गया है। हमारी जो जनरेशन है वो तो अभी अभी आई है, हमें तो उतना वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 79 वर्ष है ये बहुत ही लंबा समय है। इस देश ने बहुत प्रगति की है, इस पूरे काल में बहुत आगे बढ़कर आया है हमारा देश, और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ और वर्षों में ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और भी ज़्यादा प्रगति करेगा और नई बुलंदियों को छुएगा।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम उस समय 1947 के समय अगर हम युवा रहे होंगे तो हमारा उस समय रिएक्शन क्या होगा आज़ादी के मूवमेंट्स में। जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, महात्मा गांधी हुए, कई सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके साथ में मुझे भी लगता है कि अगर मैं उस समय होता ना तो कुछ ना कुछ तो योगदान देता। खैर, अब हम अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं, 2026 चल रहा है और आज़ादी को 80 साल कंप्लीट होने वाले हैं और बहुत जल्दी हम 100वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे 20 साल बाद, जब हम थोड़े से और उम्र की दहलीज पर बड़े हो जाएंगे। तो खैर, उस समय हम थे या नहीं थे युवा के एक तौर पर अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्वर्णिम समय है अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने का। और हमारे पास जो हमारे दायित्व हैं, जैसे हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे जो कई सारे ऐसे राइट्स हैं, उन सबको हम शामिल कर हमारी ज़िंदगी में शामिल कर हमारी देश की उन्नति को, प्रगति को चारों दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने राज।
0: बिल्कुल, क्योंकि 15 अगस्त 2026 को हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 79 साल पूरे कर रहा है दोस्तों, और इस मौके पर आज़ादी को जश्न मनाने के लिए तैयारी पूरे जोरों शोरों से पूरे देश में चल रही है।

0: लहराता रहे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने राज। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा उत्सव होता है जब देश भर में तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया जाता है। हमारे झंडे को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए ना आजादी के अमृत महोत्सव साल 2022 से ही भारत में एक अभियान शुरू किया गया है, जिसकी मैंने अभी बात की, हर घर तिरंगा अभियान। और तब से हम हर कोई, हर व्यक्ति अपने घर में भी ये तिरंगा फहरा सकता है। ये सबसे खूबसूरत बात है इसकी।
0: साथियों, 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाता है पूरे देश भर में। इसमें सभी से अपील की जाती है कि वे अपने कार्यालय, अपने घर और विभिन्न स्थानों पर शान से तिरंगे को लहराएं और उसका ध्वजारोहण भी करें। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन जन को शामिल करने के लिए और इस तिरंगे को अभियान को संचालित करने का एक जो अहम निर्णय लिया है, वो हम सभी के लिए एक कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि उनकी अपील है कि हम जितने भी देश के नागरिक हैं, हमारे जो तिरंगा है उसकी आन बान शान को बनाए रखें और प्रति वर्ष ही नहीं, मतलब हर साल दर साल अपनी शान को निरंतर बढ़ाते रहें। और जो तिरंगा अभियान है, मुझे उससे ये भी लगता है कि जितने गाँव, शहर, जितने भी ऐसे मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें हम सभी को ये बस स्वतंत्रता दिवस एक दिन का त्यौहार बन के रह जाता है, पर ऐसा ना करते हुए हम स्वतंत्रता दिवस को पूरे साल भर चलाएं। और क्योंकि एक ऐसा त्यौहार है, अनूठा त्यौहार है, जो कि हम सभी को महापुरुषों ने, कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान देकर हम सभी के लिए बीच में लाकर रख दिया है, तो ये ऐसा स्वर्णिम दिन होता है, तो उसको आप सभी याद रखिए और अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने राज। और एक इस दिन को मनाने का ये भी कारण होता है, हर घर तिरंगा अभियान के पीछे जो कारण है, मैं वो तुम्हें वो बताना चाहूँगी कि इससे ना देशभक्ति की जो भावना है उसे हम बढ़ाना चाहते हैं। और यही कारण है कि इसे लेकर आया गया, इसे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई, ताकि हर एक व्यक्ति अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसे बढ़ा पाए, उसे दिखा पाए, और ये लोगों के बीच राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में भी जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस अभियान से जुड़ी है। खैर राज, मुझे लगता है कि अब वक्त है कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज के दो प्रश्न पूछ लें।
0: बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपसे भी से रूबरू हो रहे हैं और ढेर सारी बात तो आज करेंगे आज के दिन के बारे में भी, क्योंकि 14 जो अगस्त है उसका भी अपने आप में एक इतिहास है, अपना एक महत्व है। तो खैर, बातें तो ढेर सारी होती रहेंगी, आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। पर सबसे पहले हम आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप सभी से पूछ लेते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्र ध्वज किसने डिजाइन किया गया था, किसने डिजाइन किया था?
0: बिल्कुल साथियों, तो इन दोनों प्रश्नों को आप खोज कर रखिए, अंत में हम आप सभी को इन दोनों प्रश्नों के सही सटीक जवाब देंगे। खैर, आइए जश्न को मनाएं और आजादी को गुनगुनाएं। सुनते हैं पहला गीत।

0: दोस्तों, आज की शाम कुछ खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस रात की जिसके बाद भारत ने अपने इतिहास में एक नई सुबह देखी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आज हम 15 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त की शाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी हम स्वतंत्रता दिवस की जो पूर्व संध्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे साथियों। वो शाम जब देश आज़ादी का उत्सव मनाने की तैयारी करता है,
1: तिरंगा सजाया जाता है, देशभक्ति के गीतों की धुन सुनाई देती है, स्कूलों और संस्थानों में कार्यक्रमों की तैयारियां होती है और हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर आज़ादी हमारे लिए मायने क्या रखती है?
0: साथियों, आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, त्याग, साहस और सपनों का परिणाम है। 14 अगस्त 1947 की रात भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक थी। साथियों,
1: सदियों की गुलामी और लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और देश ने अपने भविष्य की ओर एक नई यात्रा शुरू की। लेकिन ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष छुपा था।
0: साथियों, जिसे महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग हो, भगत सिंह का साहस हो, चंद्रशेखर आजाद का संकल्प हो, सुभाष चंद्र बोस का जुनून हो, सरदार पटेल का नेतृत्व हो, रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य हो या फिर लाखों सामान्य भारतीयों का त्याग, इन सभी ने मिलकर स्वतंत्रता की उस मशाल को जलाए रखा जो कि आज तक जिंदा है।
1: और इसीलिए जब हम तिरंगे को देखते हैं ना, तो उसमें केवल 3 रंग नहीं दिखाई देते बल्कि हमें दिखाई देता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना, उनका तप, उनका त्याग।
0: साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या इतनी खास क्यों है। साथियों, 14 अगस्त की शाम हमें एक पल के लिए रुककर पीछे देखने का अवसर देती है। हम सोचते हैं कि हमारा देश कहां से कहां चला गया और आज कहां जा रहा है।
1: आज हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, शिक्षा और रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय होने पर गर्व महसूस कर सकते हैं।
0: लेकिन श्रोताओं, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी हम सभी के सामने आती है। देश सिर्फ सरकार या व्यवस्था से नहीं चलता, देश बनता है आप और हमसे। हम जब ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं या फिर हम जब किसी की जरूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं,
1: जब हम पर्यावरण को बचाते हैं, जब हम कानून का सम्मान करते हैं, जब हम किसी के अधिकारों का सम्मान करते हैं, तब हम अपने देश की स्वतंत्रता को और भी मजबूत करते हैं।
0: श्रोताओं, युवाणी का कार्यक्रम और युवाओं के बिना आज़ादी की बात थोड़ी सी अधूरी सी लगती है साथियों, और आज भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग ही है। युवा केवल देश का भविष्य नहीं, युवा देश का वर्तमान भी है। आज का युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, नई चीज़ें सीखना जानता है और नई नई आविष्कार भी करता रहता है
1: और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और दुनिया में भारत की पहचान मजबूत होते देखना चाहता है। लेकिन इसी के साथ युवाओं की एक जिम्मेदारी भी है दोस्तों, अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना। सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन असली देशभक्ति तब है जब हम अपने आसपास की देश दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें।
0: छोटी छोटी आदतें दोस्तों, उन सभी को अपनाकर हम देशभक्ति का परिचय दे ही सकते हैं। जैसे सड़क पर कूड़ा ना फैलाना देशभक्ति का एक प्रकार है, ट्रैफिक नियम का पालन करना भी देशभक्ति है, या फिर किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए उसके साथ ईमानदारी से पेश आना, अपना कार्य करना और सबसे महत्वपूर्ण देश के बेहतर बनाने की कोशिश निरंतर करते रहना, ये एक छोटा सा देशभक्ति का रूप ही है। अगर हम सरहद पर खड़े नहीं हो सकते तो हम हमारे शहर में, हमारे गांव में छोटे छोटे कार्य कर देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं साथियों।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अब अगली बार आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहे और वहां पर 5 सेकंड दिखाई दे तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 5 सेकंड रुक जाइए और जब तक हरी बत्ती ना नजर आए उसके बाद निकलिए। और सड़क पर कूड़ा फेंकने से पहले बस एक बार गर्दन घुमाकर देख लेना कि आसपास कहीं कोई कचरे का डब्बा तो नहीं, और अगर हो तो वहां जाकर कचरा फेंक दीजिए। यही तो हुई देशभक्ति।
0: सही कहा तुमने। जैसा हम सभी स्टार्टिंग में, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में तुमसे बात कर रहे थे श्रद्धा, कि अगर हम उस समय 1947 के समय अगर आज के जेन जी युवा होते तो हम किस मूवमेंट में भाग लेते, हमारा क्या कर्तव्य होता, हमारा क्या रिएक्शन होता उस समय, उस मोमेंट में। तो मैं इस समय ये चीज़ सोच पा रहा हूँ कि खैर उस समय तो हम नहीं थे, पर अब 2026 की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी युवा हैं, बच्चे हैं, हम सभी कूड़ा ना फैलाकर, ट्रैफिक का पालन कर और रेड रेड बत्ती पर रुक कर और छोटे छोटे कार्य को कर देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, अपने कर्तव्यों का बिना किसी के कहे निर्वहन करना और अपने अधिकारों के लिए खड़े होना ही एक सच्ची देशभक्ति कहलाई जाएगी।
0: सही कहा तुमने।

0: दोस्तों, जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो हमारे मन में और हमारा जो एक गर्व का क्षण होता है, बिल्कुल हम गर्व से भर जाते हैं। केसरिया रंग हमें साहस और त्याग की प्रेरणा देता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का संदेश हम सभी को देता है। हरा रंग समृद्धि और विकास की ओर अग्रसर करता है।
1: और बीच में मौजूद अशोक चक्र हमें लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। अशोक चक्र मानो कहता है कि रुकना नहीं, बस चलते रहना है। एक राष्ट्र तब भी आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक लगातार आगे बढ़ते रहें।
0: श्रोताओं, देशभक्ति केवल भाषण से नहीं आती, कभी कभी ये गीत के कुछ शब्द भी हमारे भीतर देश के प्रति प्रेम की भावना जगा देते हैं। फिल्मों और संगीत ने भी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। चाहे ए वतन में या फिर मेरे वतन के लोगों कोई गीत हो, कर चले हम फिदा साथियों।
1: बिल्कुल, और संदेशे आते हैं ए वतन या फिर माँ तुझे सलाम जैसे गीत, इनकी धुन सुनते ही ना हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाती है, क्योंकि शायद ये गीत हमने बचपन से सुने हैं। राज,
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अभी बॉर्डर टू मूवी जो आई है उसमें भी जो रिक्रिएशन गाने हुए हैं, संदेशे आते हैं, मतलब कई सारे ऐसे गीत हैं जो हम सभी को उस एरा में ले जाते हैं और उस सभी का हमारे सामने चित्रण रख देते हैं कि उस समय क्या समय होगा। और आज जब हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बैठे हैं तो हमें आज़ादी के अर्थ को थोड़ा और व्यापक रूप से समझना चाहिए। साथियों, क्या केवल विदेशी शासन से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है, या शायद कोई, या फिर जब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, जब कोई युवा अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पा सके,
1: या फिर जब महिलाओं को समान अवसर मिले, वो स्वतंत्रता है। जब समाज में भेदभाव कम हो, वो स्वतंत्रता है। या जब किसान, मजदूर और श्रमिक सम्मान के साथ जीवन जी सके, जब हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके, तभी स्वतंत्रता का अर्थ और व्यापक होता है। दोस्तों,
0: इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, हमें ये भी प्रश्न करना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया।
1: बिल्कुल सही कहा। इस विशेष अवसर पर आइए दोस्तों, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन वीरों को नमन जिन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया।
0: उन माताओं को नमन जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए बलिदान करने का साहस दिया। उन परिवारों को नमन जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोकर भी भारत की स्वतंत्रता का सपना जीवित रखा।
1: और उन अनगिनत लोगों को भी नमन जिनके नाम इतिहास की किताबों में शायद दर्ज नहीं हुए, लेकिन जिनका योगदान भारत की स्वतंत्रता की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था।
0: दोस्तों, कल तो हम सभी स्वतंत्रता दिवस के जश्न में मशहूल होंगे, तो खैर आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम एक छोटा सा संकल्प सभी मिलकर लें। हम अपने देश को केवल प्यार ही नहीं बल्कि अपने उसे बेहतर बनाने की कोशिश में उसकी भूमिका में अहम भूमिका निभाएंगे। हम अपने अधिकारों को जानेंगे और अपने कर्तव्य को समझेंगे और उनका पालन भी करेंगे।
1: हम नफरत से ज़्यादा प्रेम को, हिंसा से ज़्यादा शांति को, और भेदभाव से ज़्यादा समानता को, और निराशा से ज़्यादा उम्मीद को महत्व देंगे, क्योंकि भारत की असली ताकत उसकी मिट्टी में नहीं बल्कि भारत की असली ताकत उसके लोगों में है।
0: तो आइए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम उस आज़ादी को याद रखें जिसके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया।
1: तिरंगे को देखकर सिर्फ गर्व महसूस ना करें बल्कि ये भी सोचें कि इस तिरंगे के सम्मान को बनाए रखने के लिए हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं।
0: आइए अपने देश को स्वच्छ रखें, ईमानदार रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करें,
1: क्योंकि देशभक्ति हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस देश को अपना घर मानता है।
0: सही कहा तुमने।

0: तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं आज के शुक्रवार स्पेशल साप्ताहिक खेल और विज्ञान गतिविधियों की तरफ। दोस्तों खेल की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी टीम तैयार है बड़े मुकाबले के लिए और किन खिलाड़ियों ने बटोरी है सुर्खियां, इन सब की पूरी अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं।
1: बिल्कुल साथियों, इस हफ्ते स्पोर्ट्स में काफी कुछ इंटरेस्टिंग रहा है साथियों। क्रिकेट से लेकर हॉकी तक इंडियन स्पोर्ट्स में कई बड़ी खबरें सामने आई हैं।
0: तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की स्पोर्ट्स राउंड अप।
1: लेकिन श्रद्धा शुरुआत ऐसी खबर से करते हैं जिसका इंतजार शायद हॉकी फैंस को काफी लंबे समय से रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने जा रही है
1: और टीम इंडिया की शुरुआत भी 15 अगस्त को ही होगी। भारत का पहला मुकाबला वॉलेस से है,
0: इसके बाद इंडिया का सामना इंग्लैंड और फिर पाकिस्तान से होगा, यानी कि ग्रुप स्टेज में ही। मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और सबसे ज्यादा मुझे तो पहला मुकाबला देखने में ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है जहां पर इंडिया वेल्स के साथ मुकाबला करेगी।
1: सही कहा तुमने। और वहीं टीम इंडिया की कैप्टनी संभाल रहे हैं हरमनप्रीत सिंह, वहीं प्लेयर मनप्रीत सिंह का एक्सपीरियंस भी टीम के लिए काफी ज्यादा इस समय इम्पोर्टेंट रहने वाला है।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों इंडिया ने पिछले कुछ समय में हॉकी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, अब नजर इस बात पर है कि क्या टीम इस बार वर्ल्ड कप में 51वां साल जो इंतजार है 51 सालों का उसे खत्म करके टाइटल अपने नाम कर पाती है या नहीं।
1: मतलब साफ है साथियों, 15 अगस्त को सिर्फ इंडिपेंडेंस डे नहीं बल्कि हॉकी फैंस के लिए भी एक सबसे बड़ा सुनहरा दिन है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और इंडिया का पहला मैच 15 अगस्त को शाम 4:30 बजे है।
1: अब बात करते हैं क्रिकेट की। इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट एक सबसे शानदार अनाउंसमेंट भी हुई है साथियों।
0: बिल्कुल, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा शेरे पंजाब T20 लीग में मार्की प्लेयर्स के तौर पर नजर आएंगे।
1: शुभमन गिल फलजीका के लिए और अभिषेक शर्मा अमृतसर सुरमास के लिए खेलेंगे।
0: यानी पंजाब की इस नई T20 लीग में दो बड़े इंडियन नेम्स जुड़ गए हैं, यंग प्लेयर्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है।
1: और वैसे भी T20 क्रिकेट में नए टैलेंट को देखने का मजा ही अलग है साथियों। एक छोटी सी इनिंग और प्लेयर रातों रात चर्चा का एक विषय बन जाता है।
0: बिल्कुल, लेकिन प्रेशर भी उतना ही होता है क्योंकि T20 में एक ओवर भी पूरा गेम बदल सकता है।
1: सही कहा तुमने। अब बात करते हैं टीम इंडिया की एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की।
0: इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से गेल में होगी और सीरीज से पहले इंडियन स्क्वाड में बदलाव हुआ है। इंजरी के कारण साई सुदर्शन इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है,
1: उनकी जगह सरफराज खान को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया भी गया है।
0: तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि श्रीलंका के खिलाफ इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी रहती है और सरफराज को मौका मिलता है या नहीं।
1: लेकिन श्रद्धा हॉकी की बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह का नाम हूबहू हमारे सामने आ ही जाता है और ऐसा कैसा भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि मनप्रीत सिंह ने कहा है कि उनका ये आखिरी हॉकी वर्ल्ड कप हो सकता है।
1: लेकिन 4 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस रखने वाले मनप्रीत की नजर अब इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने पर है।
0: बिल्कुल सही कहा, उनकी पूरी कोशिश है कि इस बार वर्ल्ड कप जिता कर ही माने, क्योंकि इंडिया ने आखिरी बार 1975 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, यानी अब 51 साल बाद फिर से टाइटल जीतने का मौका है और पूरी तैयारी भी है।
1: और अगर मनप्रीत का ये आखिरी वर्ल्ड कप है तो उनके लिए भी टूर्नामेंट काफी स्पेशल होने वाला है साथियों।
0: और अब एक ऐसी खबर जो सिर्फ किसी स्पोर्ट्स की नहीं बल्कि पूरे इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है
1: साथियों। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और लेजेंडरी बैडमिंटन कोच पुलेला गोपी चंद ने मिलकर इंडियन स्कूल ऑफ कोचिंग एक्सलेंस शुरू करने की एक सुंदर पहल की है।
0: बिल्कुल, और इसका मकसद है इंडिया में अच्छे और ट्रेंड कोचेस तैयार करना ताकि आने वाले समय में हमारे एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास कोचिंग मिल सके।
1: यानी सिर्फ चैंपियंस बनना ही नहीं, चैंपियंस तैयार करने वाले कोचेस भी अब हमारे देश में मजबूती से मजबूत हैं
0: और लॉन्ग टर्म में इंडियन स्पोर्ट्स के लिए काफी बड़ा कदम साबित हो सकता है।
1: तो साथियों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के ये अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों अब बात करते हैं इस हफ्ते की साइंस अपडेट्स की। साइंस की दुनिया में इस हफ्ते स्पेस से लेकर सन तक कई इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिली हैं।
1: सजीव 12 अगस्त को दुनिया के कई हिस्सों में टोटल सोलर यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलने वाला है।
0: इस दौरान मून ने सन को पूरी तरह ढक लिया था और कुछ समय के लिए तो दिन में भी अंधेरा छा गया था।
1: ये एलिकेप्स ग्रीनलैंड आइसलैंड और स्पेन जैसे देश में साफ दिखाई दिया, लेकिन इंडिया में इसे नहीं देखा गया।
0: लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल साइट नहीं था। इक्लिप्स के दौरान सन की आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना को स्टडी करने का रेयर मौका मिला।
1: और खास बात ये रही कि इंडियन साइंटिस्ट ने इक्लिप्स से पहले ही सन की कोरोना जैसी दिखाई देने वाली इसका प्रेडिक्शन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।
0: बिल्कुल, मतलब आसमान में इक्लिप्स था और साइंटिस्ट के पास पहले से ही उसका होमवर्क तैयार था।
1: अब बात इंडिया की स्पेस अचीवमेंट। इसरो के LVM-3M5 रॉकेट का अपर स्टेज करीब 9 महीने स्पेस में रहने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ भी गया।
0: ये अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि स्पेस में बेकार पड़े रॉकेट पार्ट स्पेस डेब्रिस बन जाते हैं, जो फ्यूचर सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के लिए खतरा बनते हैं।
1: इसरो ने रॉकेट स्टेज की ऑर्बिटल लाइफ कम करने की प्लानिंग की थी, इससे ये लंबे समय तक स्पेस में घूमता नहीं रहा।
0: यानी अब स्पेस में सिर्फ पहुंचना ही नहीं, स्पेस को साफ और सेफ रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
1: तो साथियों, ये थी हमारी इस सप्ताह की साइंस और स्पोर्ट्स की स्पेशल अपडेट। आप सभी को हमारा प्रोग्राम आज का युवाणी बेहद पसंद आया होगा और कल हम सभी मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के साथ जो पूर्व संध्या होती है ना, हम सभी के लिए एक उत्साहपूर्वक होती है कि कल हम जल्दी उठने वाले हैं, स्कूल जाने वाले हैं या फिर ऑफिस जाने वाले हैं और झंडा वंदन करने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम सभी को आज का जो 14 अगस्त का दिन होता है, विभाजन का भी दिन, हमें याद दिला देता है कि कब दो देश उस समय अलग हुए। तो छोटी छोटी यादें, छोटी छोटी मेमोरीज हम सभी को जहन में हमारे रहती है। और कल का जो दिवस है, कल हम 80वां स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश करने वाले हैं। तो हम सभी आम नागरिक जो हैं, हमारे देश के जितने भी नागरिक जो हैं, उन सभी की छोटी छोटी बड़ी बड़ी भूमिका बन जाती है, ताकि हम सभी देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दें और इस देश में जो भी है, जितना योगदान होने वाला युवाओं का, युवा अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने कार्य के थ्रू, अपनी शैली के थ्रू, अपने अपने आर्ट्स के थ्रू जो भी है, उन सभी के प्रति योगदान दें और देश को सुचारू रूप से चलाने में अपना अहम भूमिका निभाएं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने राज। और तुम्हें पता है, अभी तुमने आज़ादी की बात कही तो कल मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे लिए आज़ादी का क्या मतलब है। सोचो इतना खूबसूरत सा सवाल है जिसका हर व्यक्ति अलग अलग जवाब दे सकता है। तो मैंने बहुत सोचा और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से आज़ादी का मतलब वो है जब एक इंसान अपनी स्वतंत्रता से, अपनी सोच से, अपने अधिकारों को बिना मांगे उनका वाहन कर सकता है, अपने अधिकारों का पालन कर सकता है, उन्हें उनके अधिकार मांगने ना पड़े। जब एक इंडिविजुअल को अपने लिए डिसीजन लेने के लिए किसी का मोहताज ना रहना पड़े और उन्हें एक बेसिक नीड्स जो होती है इंसान की, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब मिलती रहे, वही तो आज़ादी है, और क्या चाहिए।
1: सही कहा तुमने। और आज हम आज़ादी भारत की उस यात्रा को याद कर रहे हैं जो 1947 से शुरू होकर आज नए संकल्प की ओर बढ़ रही है। विकसित भारत 2047 और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का संदेश विशेष रूप से युवाओं से जुड़ता है। विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति यानी भारत का भविष्य सबसे बड़ी ताकत है और हमारे युवा भी।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे दो प्रश्नों के उत्तर हम आपके साथ साझा कर देते हैं।
1: साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे।

0: तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, और इसका उत्तर है पिंगली वेंकैया ने। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए श्रद्धा
0: और अपने साथी राज को।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। केसरी फिल्म का गीत सुनिए बी प्राक की आवाज में। बोल मनोज मुंतशिर के हैं, धुन बनाई है आर्को ने।

गुलजार का लिखा, एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गीत सुनिए। सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश की आवाज़ में। फिल्म है स्लम डॉग मिलेनियर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
3: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था
2: जी।
3: आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी

0: जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
1: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
2: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी करो।
3: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
2: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
3: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ।
2: जैसे तुम्हारी मर्जी।
1: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम ये हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
4: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
3: जी

0: मैं दादा भाई हूँ।
1: दादा भाई,
0: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
2: अरे लड़कियां पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
3: अरे लड़कियां घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
4: अरे जाओ कुछ और काम करो।
0: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
5: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगी। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
0: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए, और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
5: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
0: मेरे साथियों, साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
4: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
0: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
6: लेकिन वो कैसे?
0: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
6: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
2: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
3: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
0: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
5: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई, और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी, क्यों क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ,
6: हाँ,
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों, वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो, इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
5: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
6: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
5: ठीक है,
6: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
5: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
6: हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
5: क्या?
6: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो, बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
5: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
6: अरे भाई, इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
5: हाँ वल्लभ, ये ठीक है।
3: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। तीन दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
4: इस घटना से वल्लभ भाई के दो प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
3: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
8: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
9: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
8: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
9: हाँ, काफी स्वयं सेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
8: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
9: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
10: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
9: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
10: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
9: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
10: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
9: जी,
10: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
9: उससे क्या होगा
10: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं, ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
3: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
4: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
11: मैं आप लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
12: ठीक है, हम सब तैयार हैं। हम तैयार हैं।
11: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
12: नहीं।
11: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
12: नहीं।
11: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
12: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
4: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।

0: वासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है।
1: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है कुंजलता वर्मा का गाया ये गीत।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं कुंजलता वर्मा के गाए गीत। लीजिए सुनिए एक और गीत, कलाकार हैं कुंजलता वर्मा।

0: सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे कुंजलता वर्मा के गायक गीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धार में भोजशाला परिसर के पास निर्धारित स्थल पर तीसरे शुक्रवार जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित होगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर इसका हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समारोह में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, जिसके बाद राष्ट्रगान होगा। भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। समारोह में करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक तथा 5000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए 15000 जवान और 1000 CCTV कैमरे तैनात किए गए हैं। देश भर में 343 स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी होंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। समारोह में पुलिस, SAF, CISF, जेल गार्ड, होमगार्ड, NCC और स्काउट गाइड्स की संयुक्त परेड होगी और मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्य समारोह से पहले मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज बड़वानी जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने आम जनता की शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। इसके बाद तलून स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर OPD, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा महिलाओं और वृद्धजनों के उपचार की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद बोरलाय के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में जिले के पहले मैथ्स पार्क का उद्घाटन किया और छात्राओं से संवाद कर गणित को रोचक और प्रयोगात्मक तरीके से सीखने के अनुभव की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवारों को राशन के लिए मिलने वाली सहायता सीधे और सुरक्षित तरीके से मिलेगी और इसका उपयोग राशन तथा जरूरी खाद्य सामग्री की खरीद में ही सुनिश्चित होगा।
2: एक तरफ काम धंधा रोजगार से जोड़ के गरीबी दूर करेंगे और दूसरी तरफ जो सबसे पीछे और नीचे हैं उनको गरीब कल्याण अन्न जैसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं में भी सहायता देंगे ताकि थाली में भोजन की कमी ना रहे और जो पैसा भोजन में खर्च होता था वो बचे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरे कामों में काम आए।
0: इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्री निमूबेन बंभड़िया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर आयोजित विभिन्न तिरंगा यात्राओं में शामिल होकर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक देश को विकसित और अग्रणी राष्ट्र बनाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कोलार रोड पर कर्मश्री की तिरंगा यात्रा को रवाना किया और प्रतिभागियों के साथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने शौर्य स्मारक में विभाजन विभीषिका दिवस पर अमर शहीदों को नमन किया और प्रवासी सेनानी वीथी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की पीड़ा से सीख लेते हुए देश की एकता, भाईचारे और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि भोपाल को 6 जिलों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्वरूप दिया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस की तिरंगा बाइक रैली भी रवाना की गई। इस अवसर पर कटनी में बारिश के बीच भव्य तिरंगा यात्रा हुई। वहीं शहडोल में 1 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई, जबकि सीहोर में भी रैलियों का आयोजन किया गया। खंडवा में तैराकों ने अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली। भोपाल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज केंद्रीय संचार ब्यूरो ने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स में संगोष्ठी का आयोजन किया। दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के निदेशक डॉ. मुकेश मिश्रा ने कहा कि विभाजन की विभीषिका को याद रखना जरूरी है ताकि देश नए बंटवारे का शिकार न हो। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक मनीष गौतम ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस आयोजन में दो दिवसीय चित्र प्रदर्शनी, प्रश्न मंच, चित्रकला, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अब श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन के कारण आकाशवाणी का कल सुबह का समाचार बुलेटिन अपने निर्धारित समय सुबह 7:10 के स्थान पर सुबह 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। धार में भोजशाला परिसर के पास सर्वे नंबर 612 पर आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत निर्धारित इस स्थल पर लगातार तीसरे शुक्रवार नमाज हुई। प्रशासन ने नमाज स्थल के आसपास बैरिकेडिंग और पर्दे लगाए थे तथा पुलिस बल तैनात किया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।
3: माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश तक एक निर्धारित स्थल पर नमाज पढ़ाने को लेकर पिछले शुक्रवार की अति स्कार भी तरह नंबर 612 पर नमाज अदा की गई। साथ ही जो पुलिस फोर्स है, लगभग अभी हमें दो कंपनियां मिली थी और 800 से 900 का बल नमाज के लिए हमें उपलब्ध हुआ था। जिले का बल मिलाकर हम लोगों ने सेंसिटिव एरिया के साथ साथ में जो CCTV के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। इस प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में नहीं।
0: अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून के सक्रिय सिस्टम के चलते पूर्वी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में 4 इंच या उससे अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 12% कम बारिश दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल संभाग में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थानीय सांसद हिमाद्री सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर पात्र किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। नर्मदापुरम जिला प्रशासन और जिला ई गवर्नेंस सोसायटी द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से आधार ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स के लिए मास्टर ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया की जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिंदी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के खंड स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। रायसेन में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भू अर्जन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की। सीहोर जिले के ग्राम ब्रिजेश नगर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया और छतरपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर मृणाल मीणा ने शासकीय हाईस्कूल गढ़ोही का निरीक्षण किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के 3 विद्युत ग्रहों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धार में भोजशाला परिसर के पास निर्धारित स्थल पर तीसरे शुक्रवार जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 6:45 पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए,
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं,
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें,
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें,
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं,
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें,
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं,
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें,
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें,
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं,
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें,
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं,
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं,
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का,
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा,
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
5: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
7: आकाशवाणी इंदौर।
5: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक, जागो उपभोक्ता। मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक, जागो उपभोक्ता। मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक, जागो उपभोक्ता। मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारे स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता के बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्रे जागरूयम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है।

हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवत्ती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जनकल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी

पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है।

तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक और हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है,
देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना मंचि अन्न दे पेंचु मन्ना देश मंटे मट्टी का दोय देश मंटे मनुसुलोय। इन पंक्तियों का भाव है देश से प्रेम करो भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में नगर-नगर में भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country and abroad celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antodaya, it is our resolve to ensure that the fruits of development reach every individual. Embracing our rich heritage and the ideals of the freedom movement, we march ahead on the path of modern development. The Vedavakya, Vayam Rashtre Jagrayamo, inspire us to always remain ready to serve the nation. During our freedom struggle, people with diverse ideologies were united by one common goal, India's independence. During the Swadeshi movement, the song Vande Mataram became a song of the masses. Countless Indians plunged themselves into our freedom struggle under the leadership of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar embodied the highest ideals of social reforms and patriotism. I humbly bow to all those great sons and daughters of the Bharat Mata whose ideals guided our country to its freedom and its progress thereafter. Today, on the 14th of August, we observe Vibhajan Vibhishika Smriti Divas,
वी सोलेमली रिमेम्बर

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
4: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया कि सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। चलते हैं कार्यक्रम के आज के सफर पर। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी।

0: इस गीत के साथ ही आज का दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए आसिफ अली को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में होंगे।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखिए समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है।

0: राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का

0: ले किया।
1: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं।
2: हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
4: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
5: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
6: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्ण रेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। आईएमडी ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: पेंटर बाबू, इस फिल्म का गीत सुनिए महेंद्र कपूर, उत्तम सिंह, जगदीश खन्ना और साथियों की आवाज में। बोल कतिल शिफाई के हैं, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

कार्यक्रम मन भवन सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है फिल्म किस्मत से, आवाज है महेंद्र कपूर की। गीतकार हैं एसएच बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। इस गीत को सुनना चाहते हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। संस्कृति नगर इंदौर से बबलू केशरी, छाया केशरी, हर्ष, मितांशी, सोमवती बाई और उनके परिवार के सदस्य। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चेतक बिरक और मीका बिरक। गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कौचाले, सबिया फजल, सुषमा, सीमा, स्मिता, श्वेता, राखी, पूनम, मीनू और उनके साथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आदर्श नगर मलोट से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म किस्मत का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

गौरी नगर इंदौर से कमल कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले, रणथंभौर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी, मॉरिस अकबर, हसन भाई, आवेश, मुकेश नारोलिया, जानकीलाल वर्मा, नियाजू भाटिया, राजपुर से घीसू तलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल तलवारे, पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, हनी जिम्मी, अमिता, दियाना, जियांश मटाई, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। इन सब की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म कहीं दिन कहीं रात, फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर।

शबनम फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीतकार हैं उषा खन्ना। इस गीत को सुनना चाहते हैं लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, देविका चौधरी, गणेश मराठा, कार्तिक मराठा, परी संजना मराठा, ललित नारायण खर्चे, सोनू वाणी और मोनू वाणी। प्रवीण नगर अमरावती महाराष्ट्र से चंदूजी हतोले, सीमा हतोले और अधिश्री। धाड़ी नंदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य और वैशाली बाठे। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताजवानो, उबेद, रजिया, जुनेद, अलीना, मुआज और आयत। आज़ाद नगर लक्सर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही और महराज जहां।

उपहार फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी। गोवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। जसपुर से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा।

तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फरमाइश आप सबकी है।

मोरटका माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, जैस्मीन और प्रयागराज। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अलतमश, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी और कोमल यादव। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजेश जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, स्वानवी देशमुख और सर्वत देशमुख। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। पारसटोला छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारणी मसिया। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म शागिर्द से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। इस गाने को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश आप सबकी है। सोमानी नगर इंदौर से बीआर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, सुमति, टोनी और निधि। यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली से रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम, नामदेवराव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल और सुनील जबड़े। अशोकनगर से दीपाली राजू टोके, पार्वती सकाराम टोके, रोहित सोनू मोनू टोके। राजकुमार मिल सिंदौर से नितिन रायकवार, अमृता रायकवार, सरिता, कृष्णवी, महेश और अहिल्याबाई रायकवार। मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंद किशोर कांसोटिया और दीपक कांसोटिया। सुदामानगर इंदौर से अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता, चित्रा और निशा। आइए इन सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म शागिर्द का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए फिल्म सच्चा झूठा का गीत, जिसे लिखा है दिवर ने, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं उन्हेल जिला उज्जैन से भेरूलाल वाक्तरिया, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया, आड़ा बाजार इंदौर से प्रतिभा पांजरे, नेहा, मनीष शर्मा, बल्लू जिया, आशीष भावना जादम, दिनेश पांजरे और उनके परिवार के सदस्य, हिप्पर सोगा लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, दस्तगीर शेख, फैजान बी, शाकिर इस्लाम बी, बाबा शेख, करिश्मा, सानिया, शकील, बिस्मिल्ला बी, गदर शेख, नीलोफर शेख, चांदनी अयूब सैयद और राजे अमन सैयद, माहिरा सैयद, शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदिनी, निखिल और गौरांश पंचोली, पिस्टान से कैलाश पगारे, दुर्गा पगारे, राहुल और मनीषा पगारे।

0: दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी, रोजूबाई, परू, मुबारक, विलास, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारे, अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान और जुनूस तड़वी, मुशर्रफ खां, जरीना, मुबारक, परवेज और समस्त तड़वी परिवार, कोल्हापुर से तुषार कुरणे, प्रासिक कामले, एकता कामले, मेघना कुरणे, उत्कर्षा कामले, अरुण यलगुड़कर, अतुल गौतमी, धमदीना, अरुण काले, एडी कामले और उनके परिवार के सदस्य।
1: यूं ही तुम मुझसे

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म सुहाग का गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, शैलेन सिंह और साथियों की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहते हैं जलगांव सोमनाथ जालना से नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक, अश्विन, वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी, वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज युवराज कोलते, रुद्र कोलकर और उनके परिवार के सदस्य। कोटवा नारायणपुर पलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय, अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा, हदिया, अस्मा, शोएब, सायमा, मुस्तफा, आफिया, रऊफ, शाहिद, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा। कोटड़ा बहादुर जिला मंदसौर से तूफान दांगी, हीना, लक्ष्य बाबू और नेपाल दांगी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती राजेश, शीतल राजेश।

अभी आपने सुना सुहाग फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। इस गाने की पसंद हमें भेजी थी दयानंद नगर नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन, बीड़ से रणजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रश्मि, रंजना और गबरू पहलवान थोरात ने, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा ने, ग्राम नावदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय, पवन सिंह, माही, आदित्य सार्थक और आदेश जाट ने। अब आज का मन भवन कार्यक्रम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। आसिफ अली को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है गजानंद वरुड़े का शहनाई पर बजाया राग यमन। तबले पर संगत की है सारंग लासुरकर ने।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे गजानन वरुड़े का शहनाई पर बजाया राग यमन। तबले पर संगत की थी सारंग लासुरकर ने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में होंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in the several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
1: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
2: The President said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
1: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
2: Speaking about the country's young population, the President said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and inspiring message on the eve of Independence Day, reflecting the aspirations of a confident, growing and vibrant India. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that the President's address offered